ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः की 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपे प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक

0: सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है गीता पर गांधी जी के विचार। वाचक स्वर है श्रीमती बरखा थानवी व्यास का।
2: नमस्कार, आज का विषय है गीता पर गांधी जी के विचार। गीता जी बड़े से बड़ा मानसिक पाथे है, चरखा बड़े से बड़ा शारीरिक संबल है, इसलिए इसे मैंने सामने रखा है। जब तक गीता जी कंठस्थ नहीं हुई है तब तक इसमें कुछ अड़चन मालूम होती है। वैसी अवस्था में थोड़ा कष्ट उठाकर गीता जी को खोल कर पढ़े। यदि एक भी व्यक्ति ने ये करना जारी रखा तो वह सारे जगत को श्रोता समझकर गीता जी का पाठ करता चला जाएगा। जिसे अपना जीवन अहिंसक बना डालने की इच्छा है उसके लिए यही योग्य है। जिसे आध्यात्मिक साम्राज्य का उपभोग करना है यही उसका कर्तव्य है। जिसे अन्य कोई साम्राज्य प्राप्त करना हो ये उसके लिए आवश्यक नहीं। इसे हम रोज रोज अधिका अधिक रसमय करते चले जाएं, चेतनमय करते चले जाएं। आज तो यह एक सप्ताह भर का बालक है, बाद में सूर्य चंद्र की तरह नियमित रूप से इसका उदय और अस्त होने लगेगा। आप लोग धीरे धीरे इन श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। मैंने कहा गीता जी बड़े से बड़ा ज्ञान भोजन ज्ञानामृत है। मेरा ये कहना अवश्य ही साभिप्राय है। कंठस्थ तो इसे कोई भी कर सकता है, राक्षस और देवता दोनों ही इसे कंठस्थ कर सकते हैं, किंतु मैंने इसे कंठस्थ करने की बात इसलिए कही है कि उसके बाद इसका सदुपयोग किया जाए, आडंबर नहीं। कंठस्थ हो जाने के बाद 2400 घंटों में से किसी न किसी क्षण उसका विद्युत स्पर्श हुआ करेगा, कोई न कोई श्लोक याद आ जाएगा और वे हमारा रक्षण करेगा। यह तो प्राणवायु है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ता रहेगा उसके लिए ये कल्पद्रुम है। इसके द्वारा हमारे तीनों प्रकार के तापों का शमन हो सकता है। यदि हम इस जीवन में इस फल को प्राप्त ना कर सके तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी श्रद्धा को विचलित हो जाने दें। यदि फल ना आए तो इसका कारण हमारे प्रयत्न की कमी होगी, वस्तु की त्रुटि नहीं। यदि हम इसी भावना से गीता का स्वाध्याय करें तो वह ज्ञानामृत है। बात तो तब है जब स्थिति ऐसी हो जाए कि गीता का पाठ किए बिना जीवित रहना कठिन लगने लगे। कहां संध्या की व्यस्तता और कहां प्रातः काल का शांत मुहूर्त। हमने गीता का पाठ कर लिया और पाठ करा दिया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा उच्चारण आदि भी दिन प्रतिदिन शुद्ध होते चलना चाहिए। एक में भी दोष रह जाए तो वह सबका दोष है। जैसे वाद्य वृंद के संगीत में एक का दोष सबका दोष हो जाता है, उसी प्रकार जीवन संगीत के विषय में भी समझना चाहिए। यदि हृदय और मन एक करके प्रार्थना चलाई जाए तो फिर शरीर का क्या, वह तो नाशवंत है, रहे चाहे ना रहे। देह नामक ये जड़ पदार्थ ईश्वर और हमारे बीच चाहे जितनी दूरी उत्पन्न क्यों ना करता हो, किंतु आखिरकार यह हमें कितनी देर तक दूर रख सकता है। यदि हम अपने बीच ईश्वर को साक्षी रखकर आत्मा का अनुसंधान करें और यदि हम एक के दोष को सबका दोष मानकर चलें तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। उच्चार शुद्धि करने की हमारी इच्छा हमारे प्रेम के अंतर्भाव का लक्षण है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना गीता पाठ कदापि नीरस ना बनने दें।

अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, विषय था गीता पर गांधी जी के विचार, वाचक स्वर था श्रीमती बरखा थानवी व्यास का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। लीजिए पहले सुनिए हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये भजन।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का हमारे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 274 से 276 तक का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया और स्वर रविंदर सांठे का है।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसमें आज की कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल संतूर वादन। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे कारगिल विजय दिवस, मैग्रोव वनस्पति संरक्षण दिवस, सही पोस्चर रखें, नियंत्रित व्यायाम करें, अल्पसंख्यकों के लिए पीएम 15 सूत्रीय कार्यक्रम। साथ ही साथ वार्ता होगी पारिवारिक मेल मिलाप में त्योहारों की भूमिका, वार्ताकार श्रीमती ज्योति दास साध।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। लघु जानकारी होगी मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कारगिल विजय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, बुकर पुरस्कार और साथ ही साथ रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी होगा।

संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय मैग्रो इकोसिस्टम संरक्षण दिवस, खेत में लगाएं औषधीय पेड़ पौधे, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, फसल वृद्धि में मधुमक्खी का योगदान। साथ ही साथ भेंट वार्ता होगी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए लाभदायक विकल्प खजूर की खेती विषय पर डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर से श्री संदीप पारिक कुमार पारिक की बातचीत। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का।

अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय मैक्रो परिस्थितिकी संरक्षण दिवस, कारगिल विजय दिवस, बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें। साथ ही साथ वार्ता होगी रोगों की उत्पत्ति का जिम्मेदार मानसिक तनाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर के सी माथुर। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।

7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा सौरभ, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे काव्य पाठ कवि श्री नरसिंह बिनाणी का। 8:45 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम होगा मुकुल। 10:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 10:55 पर होगा मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे खेती की बातें। विषय है खरीफ फसलों में मुख्य कीट और उनकी रोकथाम। वाचक स्वर है श्री अश्विनी व्यास का।
1: किसान भैया राम राम। खरीफ फसलों में कई तरह का रोग और कीट लाग जाया करे और बी रोग और कीटा सु बचण वास्ते अगर आपने उपाय ठा होवे तो आप समय सु पूर्व ही विषु बच सका। तो धान री फसल में तना छेदक कीट री निगरानी रे वास्ते फीरोमोन प्रपंच 406 प्रति एकड़ री दर सु लगाना है। प्रकोप ज्यादा हो तो कर टाइप दवाई 4% दाना 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रा बुरकाव करनो है। इस मौसम में धान री फसल में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग आने री संभावना रहे। अगर धान री खड़ी फसल में पत्ती रो रंग पीलो पड़ जाने पर ई पर जल शोक धब्बा बन रहा होवे जिके दे कारण आगे जार पूरी पत्ती पीली पड़ सके, इरी रोकथाम रे वास्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और कॉपर हाइड्रोक्साइड 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर री दर सु 200 लीटर पानी में मिलार 10-12 दिन रे अंतराल पर छिड़काव करनो है। बासमती धान में आभासी कंड आने री काफी संभावना रहे। ई बीमारी रे आने सु धान रे दाना आकार में फूल और पीला पड़ जावे जिकरी रोकथाम रे वास्ते ब्लाइटॉक्स 50 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलार 10 दिन रे अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करनो है। धान री फसल ने नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हापर रो आक्रमण भी आरंभ हो सके, ई वास्ते किसान खेत रे अंदर जार और पौधा रे निचले भाग बागरे स्थान पर मच्छर नुमा कीट रो निरीक्षण करे। अगर कीट री संख्या ज्यादा है तो ओसेन 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलार प्रति एकड़ री दर से छिड़काव करनो है। किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न री बुआई भी ई मौसम में कर सके। सरसों री अगेती बुआई रे वास्ते पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि रे बीज री बुआई कर सके। बीज दर 1.5 से 2.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर री दर सु करनी है। बीजा ने कवकनाशी पेप्टान 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दर सु मिलार और उपचार करनो है जिके रे बाद में फसल विशेष राइजोबियम रोटी को भी लगवानो आवश्यक है। गुड़ रे पानी ने उबाल ठंडो कर और राइजोबियम रो बीज रे साथे मिलार उपचारित कर और सुखाने रे वास्ते कोई छायादान स्थान ढूंढ और बेने अगली बुआई में प्रयोग करनो है। गाजर री बुआई मेड़ा पर कर सका हां आपा उन्नत किस्मा में पूसा रुधिरा बीज 4.0 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई से पूर्व बीज ने कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दर से उपचार कर और खेत में देसी खाद पोटास फास्फोरस उर्वरक आपने अवश्य डालना है। गाजर री बुआई मशीन द्वारा कर और बीज 1.0 किलोग्राम प्रति एकड़ री आवश्यकता होवे जिके सु बीज री बचत और उत्पादन री गुणवत्ता चोखी रहे। किसान प्रकाश प्रपंच रो इस्तेमाल आपा कर सका, इरे वास्ते एक प्लास्टिक रे टब या कोई बड़े बर्तन में पानी और कीटनाशक मिलार एक बल्ब जगार रात में खेत रे बीच में रख देना चाहिए। प्रकाश सु कीट आकर्षित होर ई घोड़ पर गिर और मर जावे, ई प्रपंच सु अनेक प्रकार रा हानिकारक कीटा रो नाश हो जावे। तो वैज्ञानिक विधि सु और जागरूकता रह सके अगर आपा समय सु पूर्व कीट नियंत्रण कर लेवा तो विषु आपानी फसल जी की है बिरो नुकसान होने से बच जावे और आपनो जी को मुनाफो है वो भी बने रहे। तो किसान भाई अगर पूरी सोच समझ और जागरूकता रह सके पुरातन पद्धतियां

0: और नई वैज्ञानिक पद्धतियां ने अपनावे तो विश्व अभियान ने पूरा लाभ मिले।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था खरीफ फसलों में मुख्य कीट और उनकी रोकथाम। वाचक स्वर था श्री अश्विनी व्यास का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन। आइए पहले सुनते हैं सोहनी देवी के स्वर में ये लोक भजन।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीय मंत्री परिषदः धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षण प्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी नूतन शिक्षा मंत्री भविष्यति। वर्तमान दायित्वेन सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विद फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परांतर्जा

0: अलीय माध्यमेन षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। विंशति प्रतिविंशतेः पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आरंभ होता है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी रेवाड़ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 26 जुलाई। यह सिर्फ एक तारीख ही नहीं, यह हमारे देश के स्वाभिमान, साहस और अमर बलिदान का साक्षात प्रमाण है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह दिन उन जांबाजों को नमन करने का है जिन्होंने -10 डिग्री से भी कम तापमान में खड़ी बर्फीली चोटियों पर चढ़कर तिरंगे की शान को दुश्मनों के आगे झुकने नहीं दिया। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। दो पंक्तियां हैं जो लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम ए जिंदगी। जो काटी थी कभी कारगिल की ऊंची चोटियों पर, उन्हीं सरों का सदका है आज यह आज़ादी। कारगिल के उन बहादुरों की दास्तान सिर्फ सुनी नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में महसूस की जाती है। उनकी इसी वीरता और कुर्बानी को नमन करते हुए आइए सुरों के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए सुनिए ये दिल को छू लेने वाला गीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में देश की जीत को की याद में मनाया जाता है। इस दिन को ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक भी मानते हैं, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठियों को मार गिराया था। 26 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। श्रोताओं, दुश्मनों की घुसपैठ के कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने चुपके से नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। इसके लिए भारतीय सेना ने दुर्गम और बर्फीली चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। 2 महीने से भी अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी जीत की घोषणा की। इस युद्ध में 16,000 से 18,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई और शून्य से भी नीचे के तापमान में इसे लड़ा गया था। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिकों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 4 नायक कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इन दोनों नायकों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। इनके अदम्य साहस और देशभक्ति ही आज हमें ये दिन याद दिलाती है। तो इनको नमन करते हुए हम इनके बलिदान को सदैव याद रखें और इसे अपने जीवन में उतारें, ताकि हम यह दिन कभी भी भूल ना सकें।

0: श्रोताओं, हमें कई रोगों के बारे में पता भी नहीं होता कि वो कब हमारे शरीर में हो जाते हैं, इसलिए आज हम आपको वार्ता सुनवा रहे हैं रोगों की उत्पत्ति का जिम्मेदार मानसिक तनाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर के सी माथुर, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: एक गर्भवती महिला की कल्पना करें, वो अपने शिशु के जन्म और भविष्य को लेकर अभी से चिंतित है, जबकि अभी तक उसका जन्म भी नहीं हुआ। एक विद्यार्थी को हर समय परीक्षा और उसके परिणाम की चिंता सताती रहती है, तो ऑफिस के एक बाबू को शीघ्रातिशीघ्र अपनी सीट पर पड़ी फाइलें निपटाने की चेष्टा रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तनाव हर वक्त हमारे साथ परछाई की तरह चलता है। कोई मनुष्य चाहे किसी वर्ग का हो, तनाव से बच नहीं सकता। इस एक शब्द तनाव के कई घटक हैं, जैसे चिंता, परेशानी, क्रोध, आत्महीनता, बदले की भावना, आशंका, डिप्रेशन आदि आदि। अब मान लीजिए एक माँ को यह समाचार मिलता है कि उसका इकलौता पुत्र दुश्मन से युद्ध करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। उस वक्त वो माँ रोती है, बिलखती है, उसका दामन गम से भर जाता है। ये खतरनाक तनाव की स्थिति है जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं। अब एकाएक 15-20 दिन बाद उसका वही पुत्र अचानक पूरे स्वास्थ्य के साथ घर में दाखिल होता है और बताता है कि वो खबर गलत थी, वो दुश्मन से बचते बचते वापस आ गया। अब उस माँ की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। ये भी तनाव की स्थिति है जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं। यद्यपि ये डिस्ट्रेस से कम खतरनाक है, फिर भी इसे पूर्णतया सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कहावत भी है कि ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तनाव से पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, इससे उत्पन्न लगभग सभी रोग हैं। फिर भी प्रमुखता में पेट की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक रोग आदि शामिल हैं। मान लीजिए आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, या आपकी नौकरी छूट जाती है, या कोई ऐसी ही तनाव की स्थिति आ जाती है, तो इस वक्त तनाव की पहली स्थिति से हम गुजर रहे हैं। इसके तहत शरीर में बचाव पक्ष की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, विशेषकर लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, शरीर में जल, लवण, नमक और शक्कर की कमी हो जाती है। व्यक्ति स्वयं को थका थका और असहाय सा समझने लगता है। यह तनाव की पहली स्थिति है जिसे अलार्म रिएक्शन, जिसका अर्थ है कि संभल जाओ, खतरा मंडरा रहा है। अब हमारा शरीर इस खतरे का सामना करने की तैयारी करता है, अर्थात तनाव और हमारे शरीर के बचाव पक्ष के बीच युद्ध होता है, अर्थात इस स्थिति को प्रतिरोध स्थिति या स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके तहत वापस रक्त में ग्लूकोज और नमक का स्तर बढ़ता है, साथ में शरीर की एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन का स्रावन होने लगता है तथा कॉर्टिसोन हार्मोन भी अधिक बनने लगते हैं, जिससे व्यक्ति में करो

तो मरो या भाग जाओ, फाइट फ्लाइट और फ्राइट की स्थिति जागृत होती है। कुल मिलाकर शरीर इस तनावजन्य स्थिति से निपटने हेतु तैयार हो जाता है। अब यदि तनाव ज़्यादा है और लंबे समय से अवचेतन मन में भी समाया हुआ है तो हमारा ये शरीर इस युद्ध में हार भी सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। इसे स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये युद्ध जीत भी सकते हैं और गिरी हुई स्थिति से संभल भी सकते हैं। तनाव का सर्वाधिक प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। पेट का अल्सर, एसिडिटी और आंतों की गति में बढ़ोतरी तनावजन्य ही होती है। इतिहास में भी हम झांकें तो मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब नेपोलियन को कैद कर लिया गया था तो उसे सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया, जहां उसे अत्यधिक मानसिक यंत्रणाएं दी गई जिससे उन्हें पेट में अल्सर हुआ और बाद में उचित इलाज के अभाव में उन्हें खून की उल्टियों का क्रम आरंभ हो गया जिससे उनकी मृत्यु हुई। ये था मानसिक तनाव का पेट पर प्रभाव। द्वितीय युद्ध के दौरान भी पाचन संबंधी गड़बड़ियां आम नागरिकों में देखी गई, जिनमें अज्ञात भय था कि कभी भी बमबारी से उनकी जान जा सकती है। तभी तो विलियम शेक्सपियर ने एक वृद्ध आदमी की तरफ देखकर कहा था, ओह यू आर यंग बिकॉज योर स्टोमक इज हेल्दी। हमारे पेट में, आमाशय में निरंतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो यूं तो उपस्थित एंजाइम को पाचन क्रिया हेतु सक्रिय बनाता है, मगर अम्ल का नैसर्गिक स्वभाव है जला देना। सो सामान्य अवस्था में यहीं पर स्थित कुछ कोशिकाएं गोंद जैसा लसलसा पदार्थ जिसे म्यूकस कहते हैं उसे बनाती है, जो आमाशय की दीवारों से चिपक कर अम्ल को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है जिससे रक्षा कवच बन जाता है। मगर अत्यधिक तनाव के क्षणों में अम्ल आवश्यकता से अधिक बनने लगता है तो इस सुरक्षा कवच को छिन्न भिन्न करने में कामयाब होता है। फलस्वरूप हमारे पेट की दीवारें जगह जगह से जल जाती है, वहाँ घाव भी हो सकता है जिसे अल्सर कहते हैं। अब इस तनाव से बिल्कुल बचना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, मगर फिर भी सर्वोपरि उपाय है स्वयं को कार्य में व्यस्त रखना। दूसरा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते वक्त उसे अपनी सामर्थ्य से अधिक स्थान न दें। जितना आप प्रयत्न कर सकें उतना ही करें, दिलो दिमाग पर अधिक जोर न दें। योग ध्यान आदि सार्थक परिणाम देते हैं, मगर उन्हें किसी योग्य गुरु के सानिध्य में किया जाना चाहिए। इसके तहत हम कुछ सेकंडों या मिनटों के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके अपनी मस्तिष्क को करो मरो या भाग जाओ, जो फाइट और फ्लाइट की प्रेरणा से बाहर निकालकर शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रेरणा की ओर ले जा सकते हैं, जिसमें हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जिसे परासहानुभूति तंत्र कहते हैं वो सक्रिय हो जाता है। इसमें हमारे मस्तिष्क को यह संकेत दिया कि हम सुरक्षित हैं और इसी प्रेरणा से उपस्थित तनाव पिघलने लगता है। इस क्रिया से तनाव कम होता है, शरीर सामान्य स्थिति में आता है, पाचन क्रिया सामान्य हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल तेजी से घटता है। इसमें स्थिरता विज्ञान भी इसको कहा जा सकता है, अर्थात दिमाग में चलते हुए विचारों की उथल पुथल में हम उलझते नहीं हैं। नींद पर्याप्त लें और नियमित आहार लें, सुपाच्य भोजन करें और भूलकर भी नशा नहीं करें। नियमित पूजा पाठ और संगीत भी अच्छे सार्थक परिणाम देते हैं। अपने जीवन को नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक रखें, कोई दिखावा या आडंबर नहीं करें, संतोषी सदा सुखी की प्रवृत्ति अपनाएं। याद रखें, प्रकृति ही वो मीनार है जिस पर हमारी सभी समस्याएं और समाधान अंकित है। वर्तमान में हम प्राकृतिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं, जैसे देर रात तक जगना, मोबाइल फोन को अधिक वक्त देना अर्थात स्क्रीन टाइम को बढ़ा देना, बाजार का फास्ट फूड का चलन आदि, ये सभी क्रियाएँ न केवल तनाव को बढ़ाती है वरन रोगों को भी आमंत्रित करती है। वर्तमान में छोटे बच्चे भी स्क्रीन टाइम अधिक व्यतीत करने लगे हैं, जिससे बचपन में ही वे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी आज हमारे देश की एक समस्या बन गई है। बच्चे जो मैदान में खेला करते थे वो आजकल घरों के कमरों में खेलते हैं, जिससे शरीर की कसरत नहीं हो पाती है। इसी कारण तनावजन्य रोग जो पहले बढ़ती उम्र में देखे जाते थे वे आजकल कम उम्र में होने लगे हैं।

0: इस लिहाज से भारतीय शास्त्रीय संगीत की कुछ रागें भी हमारे स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखती है और तनाव को घटाती है। जितना नज़दीक हम प्रकृति के रहेंगे उतना ही उसका लाभ महसूस करेंगे। इस पंक्ति के साथ बात समाप्त करते हैं जो बतौर साहिल लुधियानवी है कि गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहां मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। यही मत भगवद गीता में आया है जो 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रोगों की उत्पत्ति का, जिम्मेदार मानसिक तनाव। वार्ताकार डॉक्टर केसी माथुर, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का। देखिए श्रोताओं कि तनाव हमारे जीवन में किस तरह से हमारे शरीर के एक एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में तनाव को कम करना है और अपनी दिनचर्या को ऐसी स्वस्थ बनाना है ताकि हमें किसी भी प्रकार का तनाव ना हो सके।

ये था कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है अभिमान। स्वर लता मंगेशकर का है। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आइए अब सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से ये गीत। स्वर सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर का है। इस गीत को लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं आराधना फिल्म से ये गीत। युगल स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

नाराज़गियाँ, मसरूफियत और शिकायतें तो उम्र भर चलती रहेगी, मगर इस छोटी सी ज़िंदगी में जो पल हम मुस्कुरा कर जी लें, वही असल में हमारी पूंजी है। आइए तमाम

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं। तो
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर
1: सूर्य घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
5: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में

0: प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता

और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज

0: प्राथमिकता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning.

होगा, जीना है तो मरना होगा, और अंदर बिखरे रहो भले ही, बाहर तुम्हें संवरना होगा। अंदर बिखरे रहो भले ही, बाहर तुम्हें संवरना होगा, जीना है तो मरना होगा। वक्त की झोली खाली हो तो, वक्त की झोली खाली हो तो लम्हा लम्हा भरना होगा, वक्त की झोली खाली हो तो लम्हा लम्हा भरना होगा, और बिखरे कांच पड़े राहों में, बिखरे कांच पड़े राहों में, बिना डरे बस चलना होगा, बिना डरे बस चलना होगा, मत सोचो क्या करना होगा। छल छल सी आवाज है आती, छल छल सी आवाज है आती, मेरे अंदर झरना होगा, और अपनों से तो दर्द मिलेंगे, अपनों से तो दर्द मिलेंगे, उनसे हमें उबरना होगा, मत सोचो क्या करना होगा। और मैं हूँ एक हकीकत मुझको, मैं हूँ एक हकीकत मुझको, ऐसा जाहिर करना होगा, मत सोचो क्या करना होगा, जीना है तो मरना होगा। एक गज़ल और आपके सामने, रिश्तों को परिभाषित करने वाली, पिता के नाम। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी।

जाते हम जश्न मनाया करते थे, हल्की सी आहट से लगता मीठा डर थे बाबूजी, हल्की सी आहट से लगता मीठा डर थे बाबूजी। जिसमें हम धाराएं मिलती वो सागर थे बाबूजी, कागज और किताबों में ही खोए खो

चलता फिरता सा, एक दफ्तर थे बाबूजी, घर में भी चलता फिरता सा, एक दफ्तर थे बाबूजी, जिसमें हम धाराएं मिलती, वो सागर

पर खाते एक थाली में साथ सभी त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी। त्योहारों पर मिलने वाला एक अवसर थे बाबूजी। और शेर है कि हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया। हम कच्ची गीली मिट्टी थे हाथों से आकार दिया। एक तजुर्बा जीवन भर का एक हुनर थे बाबूजी। एक तजुर्बा जीवन भर का एक हुनर थे बाबूजी। सच्चाई की एक मूरत थे आदर्शों का पाठ पढ़े। सच्चाई की एक मूरत थे आदर्शों का पाठ पढ़े। गांव समूचे में दादा का ऊंचा सर थे बाबूजी। गांव समूचे में दादा का ऊंचा सर थे बाबूजी। और शेर है कि जीवन की सब ऊंची नीची राहें जिसने देखी हो। जीवन की सब ऊंची नीची

आखिरी शेर है कि वही पुरानी घड़ी हाथ में, चेहरे पर वो ही चश्मा, वही पुरानी घड़ी हाथ में, आंखों पर वो ही चश्मा, एक पुरानी साइकिल वाला रोज सफर थे बाबूजी, एक पुरानी साइकिल वाला रोज सफर थे बाबूजी। घर में रहने वालों का तो असली घर थे बाबूजी, हम धाराएं जिसमें मिलती वो सागर थे बाबूजी। अगली कविता के रूप में प्रस्तुत है पतझड़। पतझड़ नहीं होता है वह मौसम के लिए, नाराजगी भी नहीं होती है वह पेड़ की। पतझड़ नहीं होता है वह मौसम के लिए, मौसम के लिए नाराजगी भी नहीं होती है वह पेड़ की त्याग देता है वह शाखाओं पर पहनी हुई सभी पत्तियाँ, कि त्याग देता है वह शाखाओं पर पहनी हुई सभी पत्तियां, बन जाता है फकत एक ठूंठ, बन जाता है फकत एक ठूंठ, तब नहीं खिलता कोई भी फूल उसकी टहनियों पर, तब नहीं खिलता कोई भी फूल उसकी टहनियों पर, देने के लिए संसार को उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं होता, देने के लिए संसार को उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं होता। पेड़ की यह विरक्ति कहीं इसलिए तो नहीं होती कि बतियाना होता है उसे कुछ दिन केवल अपने आप से, पेड़ की यह विरक्ति कहीं इसलिए तो नहीं होती कि बतियाना होता है उसे कुछ दिन केवल अपने आप से। हाँ, वही होता है यह मौन जो बोलता है पेड़ के अंदर ही अंदर, हाँ वही होता है वो मौन जो बोलता है पेड़ के अंदर ही अंदर, जिसे तुम कहते हो पतझड़, दरअसल वह सृजना होता है पेड़ का स्वयं को नए सिरे से एक बार फिर, जिसे तुम कहते हो पतझड़, दरअसल वह सृजना होता है पेड़ का स्वयं को नए सिरे से एक बार फिर। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शब्द सारथी मन भावों के। बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह पाना। बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह जाना। कभी ये करते चोट कभी ये फूलों सा सहलाते, कभी ये करते चोट कभी ये फूलों सा सहलाते, शब्द जोड़ते हैं हृदयों को ये ही दूर कराते, शब्द जोड़ते हैं हृदयों को ये ही दूर कराते, जो कहने की बात नहीं हो मौन वहां रह जाना। बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह जाना। के शब्द सारथी मन भावों के उनको लेकर आते, जो भीतर चलता रहता है उसको तब कह पाते। शब्द सारथी मन भावों के उनको लेकर आते, जो भीतर चलता रहता है उसको तब कह पाते। कहना सुनना सुनकर कहना और कहते रह जाना, कहना सुनना सुनकर कहना और कहते रह जाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह जाना। बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना, कि मन के सागर लहरें उठती कौन उन्हें गिन पाया, मछुआरे सा व्याकुल मनवा देख रहा ललचाया। मन के सागर लहरें उठती कौन उन्हें गिन पाया, मछुआरे सा व्याकुल मनवा देख रहा ललचाया। ज्वार उठे जब जोर जोर से निश्चित है बह जाना, ज्वार उठे जब जोर जोर से निश्चित है बह जाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह जाना। कि परछाई सी फिरे जिंदगी मेरे पीछे आगे, आता है अंधियारा तब ये सबसे पहले भागे। परछाई सी फिरे जिंदगी मेरे पीछे आगे, आता है अंधियारा तब ये सबसे पहले भागे। ठीक नहीं है अंधकार का आना और रह जाना, ठीक नहीं है अंधकार का आना और रह जाना, उतना ही मुश्किल है उस

0: तो बिना कहे रह जाना, बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना। कि मेरी पूजा मेरी इबादत मेरे काबा काशी, मेरी पूजा मेरी इबादत मेरे काबा काशी, कैसे तुझको पाऊं कह दे ओ घट घट के वासी। मेरी पूजा मेरी इबादत मेरे काबा काशी, कैसे तुझको पाऊं कह दे ओ घट घट के वासी। आंसू बनकर इन नैनों से रोज तेरा बह जाना, आंसू बनकर इन नैनों से रोज तेरा बह जाना, उतना ही मुश्किल है उसको बिना कहे रह जाना। बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना, बड़ा कठिन है मन का सोचा कह पाना। और एक गजल गांव के नाम। गांव पुराना पनघट वाला कहां मिलेगा बतलाओ, आओ बैठो चा पी जाओ कौन कहेगा बतलाओ। गांव पुराना पनघट वाला कहां मिलेगा बतलाओ, आओ बैठो चा पी जाओ कौन कहेगा बतलाओ। शाम हुई है गायें आई लालटेन ला करके रख, शाम हुई है गायें आई लालटेन ला करके रख, रखा चौक में मटका खाली कौन भरेगा बतलाओ। रखा चौक में मटका खाली कौन भरेगा बतलाओ, गांव पुराना पनघट वाला कहां मिलेगा बतलाओ। शेर है कि इंटरनेटी धाराओं ने गांव हमारा छीन लिया, इंटरनेटी धाराओं ने गांव हमारा छीन लिया, धोती पगड़ी चूल्हा चिमटा कहां रहेगा बतलाओ। धोती पगड़ी चूल्हा चिमटा कहां रहेगा बतलाओ, गांव पुराना पनघट वाला कहां मिलेगा बतलाओ। कहीं गांव में गांव नहीं है शहरों की परछाई है, कहीं गांव में गांव नहीं है शहरों की परछाई है, उपलों से अब चूल्हे चेतन कौन करेगा बतलाओ। उपलों से अब चूल्हे चेतन कौन करेगा बतलाओ, गांव पुराना पनघट वाला कहां मिलेगा बतलाओ। कच्चा आंगन खटियाओं पर बच्चे बूढ़े सोए हैं, कच्चा आंगन खटियाओं पर बच्चे बूढ़े सोए हैं, फिर से ऐसा गांव मिले पर कहां मिलेगा बतलाओ, फिर से ऐसा गांव मिले पर कहां मिलेगा बतलाओ। के चौपालों से गई हथाई मोबाइल पर चैट चले, चौपालों से गई हथाई मोबाइल पर चैट चले, हर दिन गांव मिटा है कितना और मिटेगा बतलाओ। हर दिन गांव मिटा है कितना और मिटेगा बतलाओ। के घट्टी ऊपर धान पीसती रोटी सेके चूल्हे पर, घट्टी ऊपर धान पीसती रोटी सेके चूल्हे पर, माँ के हाथों का वो जादू कहाँ जगेगा बतलाओ, माँ के हाथों का वो जादू कहाँ जगेगा बतलाओ। और आखिर है कि गोबर मिट्टी साथ गूंद कर आंगन लीपा बुआ ने, गोबर मिट्टी साथ गूंद कर आंगन लीपा बुआ ने, ग्रेनाइट का फर्श तुम्हारा कहाँ लिपेगा बतलाओ। गोबर मिट्टी साथ गूंद कर आंगन लिपा बुआ ने, ग्रेनाइट का फर्श तुम्हारा कहाँ लिपेगा बतलाओ। गांव पुराना पनघट वाला कहाँ मिलेगा बतलाओ, आओ बैठो चा पी जाओ कौन कहेगा बतलाओ।
1: अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, कवि थे संजय आचार्य वरुण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।

गीता कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत, जयपुर के जामडोली में।

0: पर होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। इधर प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित शौर्य संध्या में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। एक रिपोर्ट।
1: ने दुर्गम हिमालयी चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर देश की अखंडता की रक्षा की थी। इस अभियान में 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक जवान घायल हुए। इनमें राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज सहित प्रदेश के कुल 58 वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर आज प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं, तिरंगा यात्राएं, रक्तदान शिविर, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले कल राजधानी जयपुर में शौर्य संध्या और 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। सप्तशक्ति कमान की ओर से कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी गई यह लड़ाई भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्र के साहस, एकता और आत्मविश्वास की विजय का प्रतीक है। इधर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
0: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: गौरतलब है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक कल के लिए लोकसभा कार्यसूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सहकार वन परियोजना की शुरुआत हुई। जयपुर के जामडोली में क्षेत्र में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कल अरावली की तलहटी में स्थित सुमेल गांव में पौधारोपण कर इस परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोहोल ने बताया कि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिए सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। इसे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए देशी वनस्पतियों की प्रजातियों के पौधों को लगाया जा रहा है ताकि न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता हो। यह पार्क बायोडायवर्सिटी और पारिवारिक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। श्री राठौड़ कल जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में बोल रहे थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए शूटिंग रेंज की सराहना की है।
1: आमतौर पर साधारण भाषा में बोलते थे जिसका दिल है वो जीतेगा, लेकिन अगर चैंपियन की भाषा में बोले तो जिस दिन रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उस दिन अपना परफॉर्मेंस हाई करना वो चैंपियन कहलाता। देश की सबसे शानदार आर्चरी रेंज जगतपुरा की शूटिंग। राजस्थान सरकार आर्चरी फेडरेशन को पूरा मदद करने को तैयार है। ये आर्चरी की शूटिंग एकेडमी आर्चरी फेडरेशन और राजस्थान सरकार में एक एमओयू करिए और 75% खर्चा राजस्थान सरकार करेगी, आप 25% करिए ताकि आपका उसमें अधिकार रहे और आप एक शानदार शूटिंग एकेडमी यहां पर चलवाइए और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करें।
0: श्री राठौड़ ने कल प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर जेडीए वेस्ट टू आर्ट थीम पर आधारित स्वागत द्वार विकसित करेगा। लगभग 5,36,00,000 रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इन स्वागत द्वारों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और अतिथि सत्कार की भावना को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना के तहत पहला स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग पर बनाया जाएगा जिसकी थीम खम्मा घणी होगी। यह द्वार राजस्थान की आत्मीयता और अतिथि सत्कार की परंपरा का प्रतीक बनेगा। दूसरा स्वागत द्वार घाट की घुणी टोल प्लाजा पर तैयार होगा जिसे पारंपरिक लहरिया डिजाइन की थीम पर विकसित किया जाएगा और तीसरा स्वागत द्वार गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत। जयपुर के जामडोली में 64 एकड़ भूमि पर विकसित होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर।

यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के सवेरे के 9:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश करेंगी संध्या शर्मा ओझा।

जय हिंद बच्चों, आज हमारे दिल में एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही गर्व है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम उस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं जब हमारे वीर सैनिकों ने अपनी बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसे देश कभी भी भुला नहीं सकता। बच्चों, आज 26 जुलाई है और पूरा देश आज के दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। साल 1999 में गर्मियों के दिनों में हमारे पड़ोसी देश की सेना ने चुपचाप करगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वहां का मौसम बहुत खतरनाक था, पहाड़ बहुत ऊंचे और बहुत डरावने थे, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मनों को धूल चटा दी और तिरंगा शान से फिर से फहरा दिया। इस लड़ाई में हमारे भी कई वीर जवान शहीद हो गए। इसलिए आज का दिन सिर्फ जीत या जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन सभी अमर शहीदों को नमन करने का भी है जिनकी बदौलत

आज हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की सांस लेते हैं। तो आइए बच्चों मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से बोलिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए बच्चों आपको देश प्रेम से ओतप्रोत करने के लिए मैं एक गीत लेकर आई हूं, उसे सुनते हैं पहले।

लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है अमर रहेंगे वीर हमारे। शीतल हिमगिरी के आंचल में जब संकट आन पड़ा था, शीतल हिमगिरी के आंचल में जब संकट आन पड़ा था, भारत माँ का हर मतवाला चट्टान बन के खड़ा था। कारगिल की उन चोटियों पर दुश्मन ने आंख दिखाई थी, कारगिल की उन चोटियों पर दुश्मन ने आंख दिखाई थी, तब वीरों ने अपनी तरुणाई की कीमत चुकाई थी। ना धूप ना ठंड ना आंधे से वो एक पल भी घबराए थे, हंसते हंसते सीने पर दुश्मन के गोले खाए थे। वो अमर हो गए इतिहास में, वो अमर हो गए इतिहास में, बलिदान का पाठ पढ़ा गए इस भारत के मस्तक पर, इस भारत के मस्तक पर स्वर्णिम इतिहास बना गए। हम दीप हैं उसी शिखा के जो उजाला बनकर आएंगे, इन वीरों के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे, इन वीरों के चरणों में हम अपना शीश झुकाएंगे।

Da-dum-da-dum-da-dum-da. Da-dum-da-dum-da-dum-da.

बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद अब वक्त हो चला है उसका जिसका सभी बच्चों को इंतजार रहता है। जी हाँ, हमारी कहानी का पिटारा। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी कहानी का नाम है पीकू और जादुई तुलिका। बच्चों, वैसे आप सब जादुई तुलिका इसका मतलब समझते हैं? जी हाँ, मैजिकल पेंट ब्रश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पीकू नाम का लड़का रहता था। पीकू को चित्रकारी करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंट ब्रश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन पीकू के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन, यानी कि चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, पर पीकू बहुत उदास था क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे रंग थे और ना ही पेंट ब्रश। इसलिए वह उस दिन स्कूल भी नहीं गया और पास ही के जंगल में चला गया। जब पीकू उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसकी नजर एक जादुई तुलिका पर पड़ी। अब तुलिका को देखकर पीकू बहुत हैरान रह गया। पीकू को लगा कि ये कैसी तुलिका है जो यहां जंगल में पड़ी है। अब पीकू ने जैसे ही उसको उठाया, उस ब्रश से उसने कागज पर एक बिल्ली बनाई। तो बच्चों, पीकू क्या देखता है कि वो बिल्ली सचमुच में कागज से कूदकर बाहर आ गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। पीकू तो हैरान रह गया। अरे वाह, लगता है यह तो कोई जादुई तुलिका है। पीकू बहुत समझदार था। उसने उस ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। एक बार जब गांव में सूखा पड़ा, तो उसने जादुई ब्रश से आसमान में काले काले बादल और झमाझम बारिश बना दी, जिससे बच्चों सच में बरसात होने लगी। फिर जब स्कूल के बच्चों के पास किताबें नहीं थी, तो उसने ढेर सारी किताबें बना दी, जिससे बच्चे खुश हो गए और पूरा गांव पीकू से बहुत प्यार करने लगा। लेकिन गांव का एक लालची सेठ ये सब कुछ चुपचाप छुपके छुपके से देख रहा था। उसने एक रात को चुपके से पीकू का जादुई ब्रश चुरा लिया। सेठ ने सोचा कि अब मैं इस ब्रश से बहुत सारे सोने के सिक्के बनाऊंगा। तो बच्चों, सेठ ने क्या किया, जल्दी जल्दी कागज पर ढेर सारे सिक्के बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जादुई ब्रश तो सिर्फ भलाई के कामों के लिए था, तो जैसे ही गलत काम के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, वे सारे के सारे सिक्के कंकड़ पत्थरों में बदल गए और एक बहुत ही बड़ी आफत सी आ गई, जिससे सेठ बहुत डर गया और उसने तुरंत भागकर पीकू से माफी मांगकर उसे उसका पेंट ब्रश वापस दे दिया। पीकू ने भी हंसते हुए ब्रश वापस ले लिया और गांव के सभी बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने बना दिए, जिससे सभी बच्चे उसके फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह से पीकू ने दूसरों की भलाई के लिए खूब सारे काम किए, जिससे उसका खूब नाम भी हुआ बच्चों। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमेशा जादू का या फिर ताकत का इस्तेमाल हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। लालच का फल बच्चों हमेशा ही बुरा होता है। तो कैसी लगी ये नई कहानी? मजा आया ना? चलिए अब कहानी की इस जादुई दुनिया से आपको बाहर निकालते हैं और लेकर चलते हैं गीतों की दुनिया में।

बच्चों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ विज्ञान और प्रकृति के कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों की तरफ। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो आपको आप ही के शरीर के अंदर की दुनिया दिखाएगा? बच्चों, आज कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी और आप उनके जवाब सोच के रखिएगा। देखते हैं

कितने जवाब सही होते हैं और कितने गलत। तो बच्चों पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सोचिए सोचिए। तो आंसर है हमारी जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आप ये बताइए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ और कौन सी होगी? सोचिए। क्या लगता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पैर की उंगली। अच्छा, कुछ को आंसर पता है, लेकिन रुको बच्चों, मुझे बताने दो भाई। बच्चों देखो, पहली बात तो ये पैर की उंगली नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को सही जवाब पता है वो थोड़ा शांत रहे, क्योंकि सही जवाब ये है बच्चों, हमारे कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम स्टेप्स है। पता है बच्चों, यह इतनी छोटी होती है, यानी कि एक चावल के दाने से भी ज़्यादा छोटी है, ना मज़ेदार बात। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग जिन्हें इसका आंसर पता था। अब जो एक बात सोचिए या मुझे बताइएगा, देखो आप लोग तो थक ही जाते हो जो बहुत ज़्यादा खेलते हो, है ना, लेकिन हमारी बॉडी में हमारी ऐसी कौन सी मसल्स है जो बिना थके, जो कभी थकती नहीं है, ये कहें या फिर ये कहें कि एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करती? जानते बच्चों कौन सी है वो? बिल्कुल सही। जी हाँ बच्चों, हमारा दिल। हमारा दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है और हमारी पूरे शरीर में खून पहुंच जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे मेहनती मांसपेशी है, जो कभी भी छुट्टी नहीं लेती। एक और चीज, अब बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है आप सबके पास इसका आंसर है। जी हाँ बच्चों, वो है हमारी जीभ। इसका ये आकार में छोटे होने के बावजूद भी ना, ये शरीर की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर और लचीली मांसपेशियों में से एक है, है ना मजेदार बात। तो इन रोचक तथ्यों को अपने दोस्तों को और अपने मम्मी पापा को ना आप सबको जरूर बताना है, और उनसे ये पूछना है कि क्या उनको ये पता था। देखना बच्चों, वो जब ये सब सुनेंगे ना तो वो भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब चलिए मेरे साथ अगले गीत की तरफ।

आपसे बातें करते करते कब कार्यक्रम अपने शिखर पर पहुंच गया पता ही नहीं चला, और अब आपसे विदा लेने की घड़ी भी आ गई है। लेकिन आपसे फिर मिलने और आपके और हमारे प्यारे से मुकुल कार्यक्रम में हम और आप फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, बड़ों का कहना मानिएगा और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। एक बार फिर से मेरे साथ बच्चों कहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।

ये था कार्यक्रम मुकुल। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है केसरी 2 चैप्टर। स्वर मनमोहन वारिस, कमल हीर, अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे का है। इस गीत को लिखा है सुखविंदर अमृत ने।

0: अभी आप सुन रहे थे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से ये गीत, स्वर सोनू निगम का था। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार। स्वर राहत फतेह अली खान का है, इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा है इसी जिंदगी।

0: कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए कार्यक्रम में सुनते हैं सोनू के टिटू की स्वीटी, फिल्म से ये गीत, स्वर अरिजीत।

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं सोनू के टिटू की स्वीटी फिल्म से ये गीत, स्वर अरिजीत सिंह, समृद्धजीत कुमार और अनीता भट्ट का है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है राब्ता। स्वर अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के हैं। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: बाहर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अब रेड फिल्म से ये गीत। स्वर राहत फतेह अली खां का है। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म से ये गीत। स्वर जावेद बशीर का है, इस गीत को लिखा है रजत अरोड़ा ने।

आइए अब सुनते हैं लुका छुपी फिल्म से ये गीत। स्वर अखिल, ध्वनि भानुशाली, भृगु प्राशर के हैं और इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे मनाली ठाकुर को, फिल्म का नाम था लुटेरा। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं हाईवे फिल्म से ये गीत, स्वर ए आर रहमान का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद् गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और UP।

लोकवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करे। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन।

प्रश्न करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम

गेम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी
और उनकी बेटी

कंजिला जी ने एक संकल्प लिया, दोनों बबू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन बबू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया, अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है।

हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक, सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघा

कपड़े से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी

0: भी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: जी, आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः, दुष्करं वातावरणं, शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपि तु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रीय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह

हम आकाशवाणी बीकानेर के धोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण। आज के कलाकार हैं विदुषी वर्षा अग्रवाल। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आपका संतूर वादन। हमारी इसी सभा में दोपहर 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष पॉडकास्ट। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर और दोपहर 12:10 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जयपुर के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव इकोसिस्टम संरक्षण दिवस, खेत में लगाएं औषधीय पेड़ पौधे, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, फसल वृद्धि में मधुमक्खियों का योगदान। इसी कार्यक्रम में सुनिए एक भेंट वार्ता, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए लाभदायक विकल्प खजूर की खेती। इस विषय पर डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर से बातचीत करेंगे संदीप कुमार पारिख। प्रस्तुति रेवंतराम लेघा की और संयोजन अमित सिंह का है। इसी के साथ आप सुनेंगे लोकगीत।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। इसी के साथ आप सुनेंगे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कारगिल विजय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और बुकर पुरस्कार के बारे में लघु जानकारियां और साथ में फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा की बात होगी कारगिल विजय दिवस, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस, सही पोस्चर रखें, नियंत्रित व्यायाम करें, अल्पसंख्यकों के लिए पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में सुनिए ज्योतिदास साध की वार्ता, पारिवारिक मेल मिलाप में त्योहारों की भूमिका। साथ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम।

हाजिर आयो खणी अवा जो पहेंजो सिंधी प्रोग्राम सबनिन बुधनलन के नमीशा खेमनानी जो प्यार भरियो नमस्कार साथियों अज महीने जो चौथो आर्तवार आहे ए चौथो आर्तवार थिंदो आहे असा जे बुजुर्गन लाए अज जे डी असा प्रोग्राम बुधना आयो असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो इन प्रोग्राम में तहत अवा बुधंदा एक गाल बोल ए गड ही लुत्फ मारिंदा गीत संगीत जो प्रोग्राम की शुरुआत क्यों इन खां अग मां तवां के बुधायां अज आहे कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस आजाद भारत जे सबनी देशवासियों लाए एक तमाम अहम दिहाड़ो आहे भारत में हर साल 26 जुलाई ते ही डी मल्हायो वेंदो आहे साल 1999 में भारत ए पाकिस्तान जी फौज विच कारगिल युद्ध थियो जेको तकरीबन 60 डींहनि ताईं हलियो ए 26 जुलाई जे डी ही इन युद्ध जो अंत थियो ए भारत विजय हासिल कई कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद थियल भारतीय जवानन के श्रद्धांजलि पेश करण ए उन जी बहादुरी ए बलिदान के याद करण लाए मल्हायो वेंदो आहे अचो इन ही रिथ में बुधू ताही तरानो

0: साथियों अवां हियर बुधी रहा हुआ किशन केवलानी ए साथियों जे आवाज में ही तरानो हने प्रोग्राम के अग्या वधाइंदे अचो बुधू ता गाल बोल असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो जे तहत श्री लक्ष्मण भंबाणी सा फोन जरिए गाल बोल करे रही आहे पूजा चांदवानी
1: साथियों अज असा सा गड आहिन वरिष्ठ साहित्यकार लेखक नाटककार ते निर्देशक ए उनन जी केतरो त खूबियो मा अवां के बुधाया हु आहिन वरिष्ठ साहित्यकार दादा लक्ष्मण भंबाणी जी जैसा अज असी रूबरू थिंदासी त अचो बुधु था उनन जी जुबानी उनन जी कहानी असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो दादा भंबाणी जी तवां जो स्वागत आहे असां जे जयपुर आकाशवाणी जे स्टूडियो में असां के तमाम खुशी थी रही आहे कि आज फोन जे जरिए तवां असां सा जुड़ी रहया आयो असां के पतो आहे तवां आकाशवाणी में भी इतरा त प्रोग्राम देना हन जेहे भी वक्त तवां के असां चयो आहे उन वक्त तवां हाजिर थे आयो त सब खा पहरी त असां तवां खा जानण चाहिंदासी तवां जी शिक्षा दीक्षा ए जन्म बाबत
2: हकीकत में मुझे जन्म अविभाजित भारत में सिंध में 17 नवंबर 1938 के नवाबशाह शहर में थो हो उते मां 9 साल रहस और उन खां पोइ जीअं विरहाङो थियो तॾहिं पोइ विरहाङे खां पोइ असां वॾे हिते भारत में आयासीं ऐं उन वक़्तु झांसीअ जे भरिसां बीना जंक्शन हिकिड़ो शहर हो उते असां रहियासीं छाकाणि त मुंहिंजा पिता साहिब जेके हुआ उहे रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ ऐं उन्हनि जी पोस्टिंग उते थियल हुई असांखे उते रेलवे में क्वार्टर मिलियो त असां सिधो उते ई लॾे सिधो बीना जंक्शन ते आयासीं शुरूआति असां उतां कई
1: अच्छा त तव्हांखे त लॾु पढ़ाइण जूं घणी यादूं बि हूंदियूं उन वक़्तु छा माहौल हो हुते
2: हकीकत में छा आहे त सिंध में एॾो को ख़ासि खूनरेज़ीअ जो या ॿियो को अहिड़ो ख़राबु माहौल कोन हो ऐं सभु हिंदू चाहे ॿिया जेके हुआसीं भाईचारे में रहंदा उन खां पोइ जॾहिं भारत मां महाजरनि अचणु शुरू कयो तॾहिं थोरी गड़बड़ शुरू थी उन वक़्तु असां नवाबशाह में रहंदा हुआसीं उहो जॾहिं ॾिठो थी त उते रहणु जोखम वारो आहे मुंहिंजा पिता साहब त अवली जेके आहिनि भारत पहुची चुका हुआ त हुननि चयो तव्हां हलिया अचो

0: छा पोइ परिवार सां गॾु रेल गाॾी में हैदराबाद मां चढ़ियासीं, जेका सिधा जेको जंहिं असांखे सिधो जोधपुर छॾियो।
1: अच्छा,
0: उन वक़्तु रेल गाॾीअ में बि भउ हो, छाकाणि त केतिरा जेके हुतां जा जेके आया से गाॾीअ में चढ़ी पूरो लुट पिया कनि, ऐं जेके सिंधी या जेके असां उतां लॻे पिया वञूं उन्हनि वटि जेको माल मता हो सोन मीन हो उहे पुरण जी कोशिशि कयूं, ऐं घरनि खां त पुरे विया। पर अहिड़ियुनि हालतुनि में बि जीअं तीअं करे असां जेको आहे जोधपुर रेलवे स्टेशन ते अची पहुतासीं। उते मकानी माण्हुनि असांजो तमामु घणो स्वागत कयो, असांखे भरपूर सहयोग ॾिनो, सहकार ॾिनो, खाधो पीतो वग़ैरह सभु उन्हनि असांखे मुयसरु करायो। पर हक़ीक़त इहा हुई त असांजे सिंधी खाधे ऐं उन्हनि जे खाधे में चङो फ़र्क़ु हो, पर तंहिं हूंदे बि असां उहो खाधो खाधो ऐं उन्हनि खे असां दुआऊं ॾिनियूं, महिरबानी मञियूं। उन वक़्तु उन्हनि असांजी तमामु घणी तरबोर लथी।
1: हा, चवंदा आहिनि न तकलीफ़ में त उहो जेको एक हौसलो असांखे मिले थो तकलीफ़ जे वक़्तु की न असांखे खाइण लाइ रहण लाइ जॻह मिली, त उहा बि हिकु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे की असां उनखे सहन करे ऐं अॻियां वधियासीं। त दादा, तव्हांजी शिक्षा किथे थी?
0: मां सिंध में जेको आहे जी टे चारि क्लास पढ़ी आयो हुते, छाकाणि हुते छहनि साल जी उमिरि में पहिरें क्लास में दाख़िला मिली, त मां हुते टे चारि दर्जा सिंध जा सिंध में सिंधी पढ़ियुसि, ऐं उन सिंधी पढ़ण जे करे मूंखे इहो लाभ थियो, इहो फ़ाइदो थियो त मां सिंधीअ हिते हिंदुस्तान में सिंधीअ में पढ़ण में भर हुउसि। पर हिंदुस्तान में अची असांखे जंहिं स्कूल में वञिणो पियो, उते उन स्कूल में असांखे हिंदी पाढ़ींदा हुआ, असांखे पहिरीं त अजब लॻंदो हो, पर पोइ आहिस्ते आहिस्ते असां उहा शिक्षा ग्रहण कई ऐं हिंदीअ में असां पंहिंजा दर्जा पास कया, पहिरियों क्लास, टियों क्लास, टियों क्लास, ईअं करे पास कंदा रहंदी।
1: त हिंदी में तव्हां पढ़ो त छा गॾु गॾु सिंधीअ जी बि शिक्षा वरिती तव्हां?
0: जी न, छाकाणि त न को उन वक़्तु उते सिंधी स्कूल हुआ, न को सिंधी सिख्या हुई, जिते असां हुआसीं उते कुझु बि कोन हुयो।
1: अॼु सिंधी ऐं सिंधियत, तव्हां जेतिरो साहित्य लिखियो आहे सिंधीअ में ऐं तव्हांजी ॿोली बि एतिरी सुठी मिठी आहे त असांखे लॻंदो ई न आहे की तव्हां सिंधी पढ़िया ई न हुआ हिते अची करे, त तव्हां पंहिंजो पाण खे एतिरो कीअं जोड़े रखियो सिंधियत सां?
0: उन जो जेको सबब आहे, जेको उन जो कारण आहे, उहो आहे मुंहिंजी अमर। मुंहिंजी जेका अमर हुई, उन खे किताबनि पढ़ण जो बेहद घणो शौक़ु हो। जीअं हिते रेलवे स्टेशन ते एच वीलर जा दुकान आहिनि, तीअं सिंध में बि रेलवे स्टेशन ते किताबनि जा दुकान हूंदा हुआ, ऐं छाकाणि त मुंहिंजा पिता साहिब स्टेशन मास्टर हूंदा हुआ, त उहे उन्हनि स्टॉल्स सां सिंधी किताब खणी घर में ईंदा हुआ, त उते जेका मुंहिंजी माता साहिब वांदकाई जे वक़्त में उहे किताब पढ़ंदी, ऐं उन खां ई मूंखे जेको आहे हिर्स लॻो किताबनि पढ़ण जो, ऐं छाकाणि त उते रो सिंधी किताब ई मुयसरु हुआ, अवेलेबल हुआ, इन करे मां सिंधीअ में किताब पढ़णु शुरू कया। आहिस्ते आहिस्ते मूंखे उन में तमामु घणो आनंद आयो, ऐं पोइ जेको आहे मूंखे लॻो त सिंधी साहित्य बि अथाह आहे ऐं उनखे पढ़णु घुरिजे।
1: त दादा, ही त तमामु अॼु असां हिकु नई ॻाल्हि ॿुधी, असांखे त लॻंदो हो की तव्हां तमामु घणो सिंधीअ में पढ़ियल आहियो ऐं साहित्य सां त ख़ैर तव्हांजो जुड़ाव आहे ई, सिंधियत लाइ तव्हां एतिरा कम कया आहिनि। त उन खां पोइ जॾहिं तव्हांजी शिक्षा पूरी थी ऐं तव्हांजा अॻिते जेके इहे कम हलिया सिंधियत लाइ, त उहो रुझान तव्हांखे किथां मिलियो, कीअं तव्हां अॻियां वधिया?
0: हक़ीक़त में हीअं आहे त मूंखे सचिवालय में सेक्रेटरी में नौकरी मिली वई।
1: जी,
0: नौकरी मिलण सां छा थियो त मां जीअं नौकरी करण वेंदो हुउसि, उते असांजो हिकिड़ो ग्रुप ठही वियो, असांजो ग्रुप ठही वियो जेके सिंधियत जे हलचल सां वाबस्ता हुआ, जिन जो सिंधियत जे हलचल सां लॻाव हो। उन्हनि में असांजो जेको वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुंदर अगनानी, उन खां पोइ असांजो ॿियो दोस्त श्री वासुदेव सिंधु भारती, ऐं मां बि हुन सां शामिल थी लक्ष्मण बंबाणी, असांजी तिरुमूर्ति सॼे हिंदुस्तान में मशहूर थी वई। जयपुर जी तिरुमूर्ति यानी सुंदर अगनाणी, वासुदेव सिंधु भारती ऐं लक्ष्मण बंबाणी। छा आहे त सिंधी

0: अदबियूं सिंधी कल्चर जो जयपुर में जेको बि कमु थींदो हो उन लाइ असांखे अप्रोच कई वेंदी हुई, या असां ॿाहिरां ग्रुप घुराईंदा हुआसीं त असां ई असांजो ग्रुप ई जेको आहे उन्हनि खे घुराईंदो हो।
1: जी त दादा, तव्हां जॾहिं सिंध मां हिते आया त तव्हांजी शिक्षा दीक्षा बि थी, तव्हांखे नौकिरी बि मिली सुठी, ऐं तव्हां पंहिंजा कम बि सुठे नमूने करणु लॻा, तव्हांखे का एतिरी दिक़तूं न आयूं भई जेके असां ॿुधंदा आहियूं, त हिकु सुठे नमूने तव्हांजी ज़िंदगी रफ़्तार पकड़ंदी वई, त असां इहो सम्झूं था की असां जीवन में छा पातो, त तव्हां उहो सभु तव्हां हासिल कयो जेको हिकु हूंदी आहे ख़्वाहिश की हा मां पढ़ां, नौकिरी कयां, घर बार असांजो वसे, त असांखे हाणे इहो ॿुधायो की असां जीवन में छा विञायो, छा तव्हांखे लॻे थो कि जेके कम मूं कया उन वक़्तु त अञा कुझु मूंखे वधीक हासिल थिए हा, या को अहिड़ो वाक्यो जेको तव्हांखे लॻे थो कि मूं विञाए छॾियो उन वक़्तु, अॼु ताईं तव्हांखे उन जी यादि आहे?
0: हक़ीक़त में छा आहे त मूं वटि विञाइण लाइ कुझु हो ई अहिड़ी का ख़ासि ॻाल्हि हुई कोन जेका मां विञाए पोइ पुछंदा आहियां त हीअ ॻाल्हि मूं विञाई। सिंपल हिकिड़ो तमामु सादो जीवन हूंदो, भई ठीकु आहे असांखे नौकिरी करणी आहे, सरकारी नौकिरी करणी आहे, सरकारी नौकरी करे पंहिंजे परिवार जी पालना करणी आहे, जेका पघार हुन वक़्तु थोरे में थोरी पघार मिलंदी उन मां गुज़र बसर करणो, ऐं जॾहिं पघार मां पूरो न थी त हिते पंहिंजे कॉलोनी में जिते मां रहंदो हुउसि उते ट्यूशन करणु शुरू कयो। मां सुबुह जो 6 बजे घरां निकिरंदो हुउसि बनी पार्क में सिंधी कॉलोनी में, मां घरनि में ट्यूशन ॾियणु वेंदो हुउसि, वरी सही समरी ऑफिस वेंदो हुउसि, वरी शाम जो 5:45 पंहिंजे पंहिंजे घर ईंदो हुउसि ऐं पोइ वरी ट्यूशन ॾियणु वेंदो हुउसि। अहिड़े नमूने सां जेको पंहिंजे परिवार जो पालन कयो ऐं उन खां पोइ चयो थियो त आहिस्ते आहिस्ते मां सोशल कमनि में समाजिक कमनि में बि घिरी पियो ऐं उनजो नतीजो इहो थियो त जेके बि शहर में के अहिड़ा प्रोग्राम थींदा हुआ उन्हनि खे अॻियां आणे रविंद्र मंच ते कराईंदा हुआसीं। तव्हांखे ॿुधी अजब लॻंदो
1: त
0: जयपुर में जेको रविंद्र मंच थियो
1: हुन
0: में जेको पहिरियों प्रोग्राम थियो उहो सिंधी प्रोग्राम हो,
1: सिंधी
0: प्रोग्राम हो, हरी कांत जो लिखियलु आख़िर जीत असांजी, उहो प्रोग्राम थियो आख़िर जीत असांजी, जंहिंमें हरी कांत जो इहो नाटक ऐं उन सां गॾु हुते हुन मकान खाली आहे उहो बि हिकिड़ो नंढो नाटक कयो ऐं तव्हांखे ॿुधी अजब लॻंदो
1: त
0: उहो उन खां पोइ मकान खाली आहे। असां पंहिंजे ग्रुप सां गॾु अलाए घणा दफ़ा सवे दफ़ा सॼे हिंदुस्तान में कयो, जंहिंमें मां मकान मालिक ठहंदो ऐं असांजो दोस्त वासदेव सिंधू भारती नौकर ठहंदो ऐं उनजो नालो हूंदो तोतो।
1: अच्छा,
0: हिकिड़ो हिकिड़ो वाक्यो मां तव्हांखे ॿुधायां त कीअं उहो खिलाईंदड़ नाटक हूंदो हो।
1: उहो
0: ईअं हूंदो हो त जीअं सम्झो त मां मकान मालिक आहियां, मां वेठो आहियां
1: त
0: केरु आयो भई मकान खाली आहे, उन्हनि खां सुवाल जवाब कंदासीं। सुवाल जवाब कंदे कंदे पोइ जेको आहे मकान मालिक यानी मां पंहिंजे नौकर यानी वासदेव सिंधू भारती तोते तोते खे वरजाईंदुसि, अने तोता यानी हू ग़लति त कोन चयो,
1: उहो
0: वरी वराणी ॾींदो जवाबु ॾींदो साईं तव्हां जहिड़ो थियानो इहो डायलॉग अहिड़ो मक़बूल थी वियो, मां चवंदो हुउसि तोता ग़लति त कोन चयो साईं तव्हां जहिड़ो थियानो, अॼु कल्ह हू साईं पंहिंजे ख़्यालनि में वेठो हूंदो जवाबु न ॾींदो त मां वरी रॾ करे चवंदुसि अरे तोता ॿुधी कोन थो छा हू ग़लति त कोन थियो, हू चवंदो न साईं तव्हां जहिड़ो थियानो। उन वक़्तु इहो डायलॉग जेको आहे सॼे हाल में अहिड़ो मक़बूल थी वियो जो हर को ॿाहिरि पियो निकिरे वरे पिए साईं तव्हां जहिड़ो थियणो साईं तव्हां जहिड़ो थियणो, त माण्हू खिली खिली हलंदो इहो डायलॉग पिया चवनि ऐं उहो असांजो जेको आहे नाटक सॼे हिंदुस्तान में अलाए घणा दफ़ा असां कयो
1: जी जी जी दादा, असांखे पतो आहे त जीअं असां चवंदा आहियूं सिंध जी त्रिमूर्ति शाह सचल सामी ऐं हिते असां हिंदुस्तान में ॿुधंदा रहिया आहियूं हिंदुस्तान जी त्रिमूर्ति, जीअं तव्हां बि ॿुधायो तव्हांजो नालो वासुदेव सिंधू भारती जी, लक्ष्मण जी ऐं सुंदर रघुनानी जी त्रिमूर्ति, इन्हनि ही पंहिंजी सिंधियत खे अॻियां वधाइण लाइ एतिरा त कम कया आहिनि की ॾींहं राति न ॾिसंदा हुआ की छा आहे, एतिरो तव्हां में जुनून हूंदो हो की न असांखे सिंधियत लाइ करिणो आहे, अॻियां जी जेकी नई टही आहे उन्हनि खे इन सां जोड़णो आहे। त दादा तव्हां छा चवणु चाहियो?

0: जेकी अज जी नई टई आहे जेकी लिखे थी थोड़ो घणो हा कोशिश करे थी अग्या उनन जे लाए तमा कुछ एड़ो संदेश दियो कि हा हु अग्या वधन है सुठे नमूने लिखन
1: मां ते यो चोंदो से फिर भकरो की विसारा मां ओहा बोली जेने मां ओदनी मुखे बोली यो पूछो के अमर जे बोली में तवा के लोली दिनियो उने अमर ये लगे रखो अमर ये दिनल लोली के नवसारो उने के सदाई याद रखो उने में को छो अजे न सुभाने तहां के जेकडे
0: तमाम सुठो तव्हां अॼु संदेश ॾिनो आहे कि पंहिंजी अमर जी ॿोली पंहिंजी लोली उनखे न विसारे पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइणु खपे तव्हां जेके अहिड़ियूं शख़्सियतूं असां सां गॾु आहिनि जेके हमेशह असांखे हिमथाईंदियूं रहियूं आहिनि कि न पंहिंजी ॿोली ही सभु कुझु आहे ॿोली आहे पंहिंजी त पंहिंजी सिंधियत आहे त असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे तव्हां जेको समाज के विरायो आहे वो एतरो आहे कि अगर को उनके समेटण चाहे उनमा कुछ खणण चाहे त वो पाण मालामाल थी वेंदो पर हा वो जुनून जेको तव्हां चो वो जज़्बो वो असांजी अॼु जी नई टई में भरणो आहे तॾहिं हू इन खज़ाने जो उपयोग करे सघंदो जी जी दादा तमाम सुठो लगो असा जीवन में छा पातो छा विनायो ए छा विरायो जे तहत तहां पेंजो गालियो असा के बुधायो तहां जा असा थुरायता आयो तहां पेंजो कीमती वक्त देई आज असा सा रूबरू थे आयो
2: अमा हिया बुधी रहा हुआ श्री लक्ष्मण बंबाणी सा पूजा चांदवानी जी कयल हिया गाल बोल हिया रिकॉर्डिंग असा कुछ वक्त अग कई हुई सदा हयात श्री लक्ष्मण बंबानी जो जन्म 17 नवंबर 1938 ते अखंड भारत जी
3: बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव
4: नमस्कार एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी शरीर पर दर्जनों चोटें लगी लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: जय हिंद सबको नमस्कार राम राम।
4: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
5: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है जगाधरी के पास और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं रुड़की जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे वो अकाउंट्स में थे CDA में उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। थोड़े दिन में ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है घर से भाग गए और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दिया। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यूटर्न था और उस पहले यूटर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते जहां हो जैसे हो वहां पर आपको अपने परिश्रम से अपने बल से ऊपर उठ के

0: लेना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसे मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापिस आया घर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस जाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
0: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले एनडीए में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, एनडीए में 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला, क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से भी आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, 24 साल की मेरी उम्र थी, वो युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके साथ।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थी और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। पूरे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मश्को, उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक नूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी

0: सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी। पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे, उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो, भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसी हुई थी? हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे ऊपरी ऊपर बैठने की नजर रख रहे थे कि क्या करता है, सारा दिन कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई, वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार में घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई, तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का 7 डोगरा

0: पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो चार जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगी की ले जाने से बोला गया, लेकिन भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजेंद्र सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था, तो उन्होंने मुझे बचाया। और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी हुई। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजेंद्र सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसी जगह है, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन, वो तो तंग करने से नहीं हटे लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने की बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।

0: टंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
1: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉइस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है। शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
0: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप एक साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रही, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
1: तकरीबन एक साल मैं हॉस्पिटल में रहा और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बनके कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं एक कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी

0: पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माय केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास्ट की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 मिनट भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो
1: जी।
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है
1: जी,
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उन्होंने बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा उस लड़की का, आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी
1: जी,
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: तीन बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जांपल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई मोड पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, भले बूढ़े हो। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप,

0: तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाइए श्रोताओं, दोपहर का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: श्री मोदी ने वन साइड वन नेशन वन सैल्यूट के संदेश के साथ इस वर्ष हुए शौर्य विजय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी की चर्चा की। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और कुश मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली पल बताया। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने देशवासियों से आसपास के तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेने की अपील की ताकि एक एक बूंद जल को बचाया जा सके।
1: 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से

0: खाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं।
1: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की भी अपील की। साथ ही 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक बताते हुए लोगों से हथकरघा शिल्प को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए कहा कि हाल के समय में भारत के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉ कलाम के व्यक्तित्व में शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यह दिन सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जनभागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर का 1:05 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं अनवी।

0: कुछ इस तरह से हम हर रिश्ता निभाते हैं जो साथ चले उन्हें दिल में बसाते हैं।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि जीवन के इस सफर में हम इस तरीके से आपसे कार्यक्रम में रूबरू होते हैं कि सफर और भी सुहाना हो जाता है। आपसे प्यारा सा रिश्ता जो है तो निभाने आई हैं आपकी अपनी दो सखियां, मैं डॉक्टर स्वरण रेखा
0: और मैं अनवीति गोस्वामी।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: वैसे बात चाहे कार्यक्रम के सफर की हो स्वर्ण, या फिर हो जीवन रूपी सफर की, जीवन में हम सबको साथ लेकर चलते हैं,
1: बिल्कुल
0: परिवार दोस्त रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या हम इस सफर में अपना खुद का साथ निभाते हैं।
1: यही तो बात है ना अनविति, कि हम जीवन के सफर में सबके साथ ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। तो हमारा सफर आज हमारी सखियों के साथ में इसी बात के साथ, चर्चा के साथ शुरू होता है कि क्या कभी आपने अपना साथ दिया है। आईने में देखते तो हैं खुद को, लेकिन
0: पहचानते नहीं।
1: बिल्कुल सही।
0: ये बात मेरे जहन में कैसे आई कि क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। अब मैंने देखा कि एक पौधा ऐसा था जो दरवाजे के ओट पे मैं भूल गई रखकर, और वो बिल्कुल बगीचे के घुसते ही एंट्रेंस में रखा हुआ था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो मुरझा गया।
1: बिल्कुल
0: उपेक्षित सा लग रहा था, और तभी मेरे जहन में ये बात आई कि हमारे साथ हमारा रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है।
1: बिल्कुल, जब हम खुद को भूल जाते हैं ना, तो हम भी अपेक्षित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उस अपेक्षा में हम ये नहीं जानते कि हमने खुद को ही दरकिनार कर दिया।
0: इसके लिए जरूरी है कि जैसे पौधों को हम समय समय पर पानी देते हैं, धूप देते हैं, देखभाल चाहिए उन्हें, वैसे ही अपने आप को भी सेल्फ लव रूपी, सेल्फ केयर रूपी देखभाल की हमें जरूरत है।
1: और इस देखभाल में आपका सफर और सुहाना होता है जब म्यूजिक हमारे साथ जुड़ता है। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं और आज एक विशेष दिवस भी है। जी हाँ, आप सभी को पता है और बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि आज हम कारगिल दिवस भी मना रहे हैं, और उन शहीदों को भी नमन है जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो सबसे पहले जय हिंद जय भारत उनके लिए जिन्होंने हमारे को आज ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। और साथ ही हमारे गीत संगीत के सफर में अनविति, जब हमारी सखियां खुद के साथ जुड़ती हैं तो शायद और झूम जाती है।
0: बिल्कुल, तो चलो बातों की इस गंभीर राह से निकलकर अब जरा मुस्कुराहट की पगडंडी पर बढ़ते हैं और बेफिक्र मुस्कान के साथ सुनते हैं ये गीत।

हम भीगा भीगा मौसम गुनगुनाती है छम छम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सच कहूँ ना तो कोई भी हम नई आदत शुरू करते हैं तो उसके लिए किसी चिंगारी की यानी कि मोटिवेशन की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा। और सेल्फ मोटिवेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है, हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, श्रृंगार कर रहे होते हैं, तो कई बार हम हमारे जुल्फों को देखने लग जाते हैं, अरे इसमें चांदी निकल आई है। मुझे गुलजार साहब की बात बड़ी अच्छे से याद आती है कि चांदी तुम पे बहुत अच्छी लगती है, ये उम्र तुमको संवारने लगी है। उनका एक शेर है, लेकिन ये मैंने अपने शब्दों में कहा क्योंकि हम गुलजार साहब तो नहीं बन सकते कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से एक महिला के श्रृंगार का वर्णन किया है। चंदन दास जी ने बड़े सुंदरता में उस बात को कही है और बहुत से शायरों ने अपनी खूबसूरती के अंदाज में, अपने शब्दों के जिसको पकड़ में, महिला की खूबसूरती की बात की। लेकिन जब महिला ही अपनी खूबसूरती भूल जाती है, पसीने से तर बतर आकर जब वो शीशे के सामने पसीना पहुंचती है, मसालों की खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है, लेकिन वो खुद को भूल चुकी होती है कि वो एक परिवार के लिए कार्य तो कर रही है, एक निमित्त मात्र बन गई है, लेकिन खुद को भूल कर पीछे हो गई है। तो जब आप शीशे के सामने खड़े हुए तो दो बातें अपने से भी कीजिए क्योंकि तब आप खुद से मुखातिब हैं।
0: बिल्कुल। और अगर फिर भी मोटिवेशन ना आए तो हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण तो आज ही मैंने घर से निकलते ही, मेरी जो आदत है कि एक बार मोबाइल स्क्रॉल कर ही लेती हूँ, तो मुझे आज जैसा कि हमने बात की ही थी कि कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस, तो उस अवसर पर मेरे एक लेख पढ़ने को मिला मुझे सोशल मीडिया पर। उसमें उन वीर नारियों का जिक्र था जिनके जीवन साथी देश की सरहदों पर हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वे नारियां कैसे अपने जीवन साथी से दूर रहकर भी प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाती हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास।
1: बिल्कुल सही कहा। और तुमने जब ये बात कही है तो मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में कहना चाहूंगी कि एक फौजी परिवार से ब्रॉट अप हुई हूँ और पिताजी ने भी 71 की लड़ाई में और 64 की लड़ाई में देश के लिए अपने आप को वहाँ पे रखा और शौर्य चक्र उनको मिला। और आज मेरे एक भाई सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, इस कर्नल राइट नाउ, और करगिल में ही उनकी पोस्टिंग है अभी।
0: अच्छा।
1: तो जो एक परिवार, जैसे तुमने अभी कहा कि एक फौजी की जो बीवी सोचती है पीछे बैठ के घर परिवार के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, अपने बच्चों को कैसे रेज करना है, उनकी पढ़ाई से लेके और अपने पति के समर्पण को आगे देखते हुए, तो सबसे पहले तो माँ को नमन है कि जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम आज बहनों से मुखातिब होने के लिए रेडियो के माध्यम से आज मैं थोड़ा सा भावुक हूँ इस पल को लेकर, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने बचपन से देखती आई हूँ कि एक शहीद का परिवार क्या होता है, एक फौजी का परिवार क्या होता है। तो आज जो सेल्फ केयर की तुम बात कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो महिलाओं के संगठन बने हुए हैं फौजियों की महिलाओं के द्वारा जो आज चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे जवानों की जो बीवियाँ होती हैं, उनकी बहनें जो हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए भी बहुत सा कार्य करा जा रहा है जिसे आवा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे वो उनके बच्चों की केयर से लेके, उनके सेल्फ मोटिवेशन से लेके, उनके एम्पावरमेंट से लेके कि ये कहीं कार्य करें, सब कुछ पे ध्यान दिया जाता है।
0: बहुत ही अच्छी बात है। और इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्रेम, जो केवल साथ रहने में नहीं है बल्कि घर की जो परिस्थिति है हर परिस्थिति में एक दूसरे का संबल बनने में है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में दिखावा नहीं होता है बल्कि बस एक इंसान की खुशी होती है जिसमें उसे अपनी पूरी दुनिया नजर आने लगती है। और हमारा ये गीत भी तो कुछ यही कहता है।
1: और जीवन में जहाँ हम एक दूसरे को लेकर चलते हैं तो कभी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन का वो पार्ट है जहाँ से हम खुद के लिए एक पहला स्टेप लेते हैं। सो बी योरसेल्फ, बी फेथ इन योरसेल्फ, अपने अंदर एक भरोसा, विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं खुद के लिए, खुद को सम्मान से खड़ा कर सकती हूँ।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: स्वर्ण, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे सबसे बड़ी जीत जो होती है वो होती है खुद पर विजय पाना। और वैसे देखा जाए तो हर विजय का अपना एक महत्व होता है। कोई विजय इंसान को मजबूत बनाती है भीतर से, तो कुछ विजय ऐसी होती हैं जो पूरे देश का मस्तक ऊंचा उठा देती
5: है। बिल्कुल सही कहा। और इस पे मुझे लता जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि जरा याद कर लो उनको जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी है, उनकी कुर्बानी दी है। और जिसको सुनकर उस गीत को देखिए, मैं गाना मेरी उस औकात में नहीं है कि मैं लता जी के उस गीत को अपने शब्दों में कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उस गीत को सुनकर जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो उस देश का शहीद कितना बड़ा अपना नाम रखता होगा।
4: बिल्कुल। तो ऐसे ही एक गौरवशाली विजय की याद दिलाता है आज का दिन। यानी आज का दिन, जैसा कि हमने पहले भी बात की, कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हर वर्ष 26 जुलाई का दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए कारगिल की उन सभी चोटियों पर फिर से तिरंगा फहराया था जिन पर दुश्मनों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
5: बिल्कुल सही कहा। उसमें आपने नाम भी सुने होंगे, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, ये पेप्सी की, मैं एक उसका नाम ले रही हूँ, वैसे हम लेते नहीं हैं, लेकिन ये बताना आपको जरूरी है कि जो ये टैग लाइन पंच लाइन उठाते हैं, ये दिल मांगे मोर, ये उनकी कही हुई बात थी। उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो था जिसमें उन्होंने ये कहा था टेंट में बैठे हुए कि अभी तो बहुत सी हमें ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत सी पहाड़ियों को हमें छूना है, और उन चोटियों पर विजय तिरंगा फहराना है जहां पर एक छोटी सी जीत हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। उन्होंने अपने शरीर पर 36 गोलियां खाई थी, और हाँ, जब तक आखिर तक वो अपनी आखिरी सांस तक रहे थे, उनके दिल में यही बात थी, और उनका ये लाइव रिकॉर्डेड वर्ड्स था कि ये दिल मांगे मोर, स्टिल ही इज बीइंग अ फाइटर, और वो उस चीज के लिए लड़ते रहे, और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐसे बहुत से हैं, आपने ब्रिगेडियर मानिक शॉ का नाम सुना होगा, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को 64 की लड़ाई में ये बात कही थी कि डार्लिंग दिस इज द वे वेयर द आर्मी, इंडियन आर्मी शुड रेजिस्ट, कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे भारतीय सेना खुद को एक बहुत बड़ी पहचान के साथ में खड़ा कर सकती है। पूरा विश्व देख रहा था उनके कहे शब्दों को, और उन्होंने आखिर तक जाते जाते अपने देश के जवानों को, अपने देश के उन मजबूत कंधों को बड़ा किया जिनके अंदर आज हमारी भारतीय सेना समाहित है।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज का दिन हमें सिर्फ जीत का जश्न मनाना नहीं सिखाता है, बल्कि उन वीरों के बलिदान को याद रखने का और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा भी देता है।
5: बिल्कुल। और जहाँ कृतज्ञता की बात हो, उन करगिल के वीरों के लिए अपनी एक सच्ची श्रद्धांजलि शायद एक छोटी सी कविता के माध्यम से हो सकती है।
4: बिल्कुल। कि हिम की चोटी कठिन डगर थी, फिर भी हिम्मत कम न हुई, तिरंगे की शान बचाने को हर सांस वतन के नाम हुई।
5: कुछ लौटे लेकर विजय पताका, कुछ अमर कहानी बन गए, भारत माँ की रक्षा करते इतिहास निशानी बन गए।
4: आज भी जब तिरंगा लहराता है हर दिल गर्व से भर जाता है। कारगिल के उन वीर सपूतों को भारत सशक्त नमन कर जाता है।
5: बिल्कुल सही।
4: और आइए आज के इस गौरवशाली दिन पर हम सभी अपने जीवन में साहस, अनुशासन और देश प्रेम के मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें। यही हमारे वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
5: और हमारे वीरों का शौर्य केवल इन सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के हृदय में देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत करना और उसे ज्वलंत रखना, ताकि ये भावना हमें हमारे विश्व पटल पर भी अपने देश को सुनहरे अक्षरों में रखता रहे।
4: आइए इसी भावना को स्वर देता हुआ ये संदेश हम सुनते हैं।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को

0: समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सखियों, जैसे हमारे वीर सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही प्रकृति ने भी हमें कुछ ऐसे ही मौन प्रहरी दिए हैं जो कि बिना किसी सम्मान, बिना किसी पहचान की चाह के हर पल अपना कर्तव्य निभाते हैं।
2: बिल्कुल सही। और ये है हमारी मैंग्रोव वेजिटेशन।
1: बिल्कुल।
2: और ये कोस्टल एरिया पे होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान में एक पाठ हमें पढ़ाया जाता था कि ऐसे पौधे जो श्वसन करते हैं, इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वो हवा में ऊपर तैरती रहती हैं और ये अपना श्वसन का कार्य करती है, रेस्पिरेशन करती है। लेकिन इन पौधों के बारे में, इस प्रकृति के बारे में जो लोगों को बहुत कम पहले पता होता था, जो कोस्टल एरियाज में रहते थे, किनारों पर रहते थे, उन्हें पता होता था। और इसमें बहुत से पौधे ऐसे हैं जो हाईली मेडिसिनल प्लांट्स आप उनको कह सकते हैं। बहुत सी बीमारियों में इनकी दवाएं बनाई जाती है। और इनके संरक्षण का कार्य शुरू किया गया था 1972 से, जहां से सबसे पहले हमारे पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम बनानों की और उनके संशोधनों की बात करनी शुरू की गई थी।
1: बिल्कुल।
2: और उसमें शामिल किया गया था, है ना।
1: इन्हीं अनमोल प्राकृतिक रक्षकों के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 26 जुलाई का दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि आपने बताया है कि मैंग्रोव क्या है, ये ऐसे सदाबहार पौधे हैं या झाड़ियां होते हैं जो कि खारे पानी में या उथले पानी में उगते हैं, यानी कि समुद्र के तटों पर, जैसे हमने बात की, नदी के मुहानों पर या फिर ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। और ये मैंग्रोव भूमि और समुद्र के बीच की कड़ी होते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक रक्षक हैं, ये तूफानों से, सुनामी से, समुद्र के जल स्तर जब बढ़ता है या फिर धरती का कटाव हो सकता है, उसके खिलाफ हमारे प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम
2: करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एक कार्य ये भी होता है कि हमें जो ग्रीन वेव्स हैं, जो हमारा डिप्लीशन होता है हमारी ओजोन परत का, उसमें भी मदद करते हैं अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह कार्य करते हुए। ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इनको बोल सकते हैं। और साथ ही इनके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतुओं की रेयर प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। इनका प्राकृतिक जगह या स्थान निश्चित है। और भारत में ऐसे 7 मैंग्रोव वेजिटेशंस के हॉटस्पॉट्स कहे गए हैं जहां पर इनको संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।
1: बिल्कुल। लेकिन आज बढ़ता हुआ प्रदूषण है और जो तटीय इलाकों में अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं या फिर जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसी कई वजहों से ये जो जंगल हैं ये लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना। इसलिए जरा हमें सोचना होगा इस और भी कि हम अपनी सुरक्षा करने वाले इन प्राकृतिक रक्षकों को ही खो देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या बचा पाएंगे।
2: और सबसे बड़ी चीज है हमारी सखियों कि हमें हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चों के प्रति जागरूकता जिसे हम कहते हैं पर्यावरण को लेकर, उसका एक बड़ा रोल प्ले करना होगा, क्योंकि माताएं ही सबसे पहले अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं। तो आप ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हम समय समय पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये जानकारियां पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल। और किसी ने कहा भी है कि प्रकृति का अध्ययन करो, प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति के करीब रहो, क्योंकि ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। इसीलिए प्रकृति संरक्षण में अपनी छोटी सी हिस्से ही पर जिम्मेदार भूमिका हमें निभानी चाहिए। प्रकृति से दोस्ती का ये भी एक नया रूप है।
2: बिल्कुल सही। और आपने तो हमारे पुराने बॉलीवुड सॉन्ग सुने ही होंगे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा प्यार हमारा जाने है। और भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें हम पेड़ के चारों तरफ पकड़ते हुए, उनको लिपटते हुए, पुराने हीरो हीरोइंस आपने देखे होंगे गुलाब के फूल नचाते हुए या पालों में गजरा लगाते हुए। और कहीं कहीं तो हमने ये भी सुना है कि चली आई मैं बीकानेर से, जी हाँ, वो जो सॉन्ग है मालन अलबेली। इस तरीके के गानों में भी जब हम प्रकृति का जिक्र करते हैं या बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं संगीत भी हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पौधों के पास में अगर आप संगीत बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आपके पौधे उतने ही मुखरित होते हैं। ये भी करके देखिएगा, इट्स ऑल्सो ए साइंस, बट हाँ, ये हमारे दिल से जुड़ा है। तो सुनिए ना एक और खूबसूरत गीत।

0: सखियों मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि आगे कुछ दिनों बाद में सावन लगने वाला है। वाल,
0: बिल्कुल, और ये बदलती फिजा बता ही रही है कि सावन अब दूर नहीं है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। और सावन जब आता है ना तो अपने साथ बारिश ही नहीं बल्कि त्योहारों का सिलसिला भी लेकर आता है।
1: बिल्कुल सही, और वहाँ पर हमारे अपनों का साथ बहुत खास हो जाता है। घर पे मेहमानों का आना जाना लग जाता है और साथ ही कुछ ना कुछ उनकी मनोहार, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज बनानी है या उनसे गिले शिकवे दूर करने हैं, तो ये सबसे अच्छा समय होता है जब हमारे अपने हमसे जुड़ते हैं। घर पे एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता है।
0: यही तो है त्योहारों की खूबसूरती। कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आई है ये वार्ता, जिसका विषय है पारिवारिक मेल मिलाप में त्योहारों की भूमिका। वार्ताकार है श्रीमती ज्योति दास साध।
2: 21वीं सदी में हमने तकनीक के क्षेत्र में जितनी तेज प्रगति की है, शायद उतनी ही गति से हमारे संबंधों में दूरियां भी बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट और वीडियो कॉल ने हमें दुनिया से जोड़ा जरूर है, परंतु क्या आपने उसे कुछ हद तक दूर किया है? हम हर समय रिश्तेदारों से सोशल मीडिया द्वारा कनेक्टेड है, फिर भी सोशल कनेक्शन जैसे खो गया है। एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग कमरों में मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और भावनात्मक जुड़ाव की जगह डिजिटल मौजूदगी हावी हो गई है। ऐसी स्थिति में त्यौहार हमें जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय समाज की पहचान उसकी विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि में निहित है। इस सांस्कृतिक विरासत का सबसे मधुर और सजीव रूप त्योहारों में प्रकट होता है। ये त्यौहार केवल धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवारों को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम भी है। आधुनिक जीवन की आपाधापी और एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच त्यौहार वहाँ अवसर बन जाते हैं जब रिश्ते ताजगी पाते हैं, संवाद होता है, भावनाएं जुड़ती है और पारिवारिक मेल मिलाव का माहौल बनता है। भारतीय त्यौहारों का स्वरूप केवल धार्मिक कृत्यों तक ही सीमित नहीं है, यह सामाजिक समरसता, सामूहिक उल्लास और भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन

रमजान, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओणम, नवरात्रि जैसे त्योहारों में परंपराएं ही नहीं जुड़ी होती बल्कि परिवार के हर सदस्य की सक्रिय भागीदारी होती है। आज तकनीक ने जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। संदेश भेजना, कॉल करना, वीडियो पर बात करना, सब कुछ एक बटन की दूरी पर है। लेकिन इसी तकनीक के चलते पारिवारिक समय, संवाद और आत्मीयता में कमी आई है। पहले जो बातचीत आमने सामने होती थी अब वह टाइप हो जाती है। पहले जो मिलकर हंसी और खुशी बांटी जाती थी अब इमोजी और फॉरवर्ड मैसेज में सिमट गई है। यानी तकनीक एक वरदान है परंतु इसके असंतुलित उपयोग ने रिश्तों को मशीन जैसा बना दिया है। भारतीय त्यौहार न केवल घर की सफाई और सजावट से आरंभ होते हैं बल्कि परिवार में सहयोग, साझेदारी और सामूहिक निर्णय की भावना को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली में घर की सफाई से लेकर पकवान बनाने और पूजा की तैयारी तक हर सदस्य को कुछ ना कुछ भूमिका निभानी होती है। यह प्रक्रिया आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन असल में हम कितने जुड़े हैं कभी सोचा है? आपने आखिरी बार अपने माता पिता से बिना मोबाइल देखे कितनी देर बातें की है? आपने बच्चों की आंखों में देखकर उसके स्कूल की बातें कब सुनी? आपने जीवन साथी के साथ बिना किसी व्याकुलता के शाम की चाय कब पी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जुड़ाव मन से होता है या स्क्रीन से नहीं। आजकल का दृश्य आम हो गया है। एक ही परिवार के सदस्य एक ही कमरे में बैठे हैं लेकिन हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है। ऐसे में घर घर तो है लेकिन संवाद, अपनापन और साझापन खो गया है। पहले साथ बैठकर टीवी देखना, एक साथ खाना खाना, गपशप करना, यह सब रिश्तों की गर्माहट थी। अब वह जगह मोबाइल ने ले ली है जहां संवाद नहीं सिर्फ स्क्रॉलिंग होती है। कई बार व्यस्त जीवन, आपसी मतभेद या दूरी के कारण रिश्तों में संवाद टूटने लगता है। ऐसों में त्यौहार एक सेतु का काम करते हैं। चाहे रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई से मिलने आए या होली पर दूर रह चचेरे भाई घर लौटे, ये पल भावनाओं को फिर से ताजा कर देते हैं। कभी कभी केवल एक त्यौहार पर भेजी गई मिठाई या बधाई संदेश भी वर्षों की दूरी को पाटने का काम करता है। भारतीय परिवारों में यह बहुत आम है कि वर्षों से दूर रहे सदस्य दीपावली या होली पर घर लौट आते हैं। यह मिलन एक स्थायी स्मृति बन जाता है जो परिवार के ताने बाने को मजबूती देता है। केवल एक दिन की बात नहीं बल्कि उसकी तैयारी एक साझा प्रयास होता है। घर की सजावट, नई खरीदारी, मेहमानों का स्वागत, पूजा की तैयारी, इन सब कार्यों में जब परिवार के सभी लोग एक साथ लगते हैं तो एक अघोषित टीम वर्क विकसित होता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे घर के कार्यों में भाग लें, कैसे बड़ों की मदद करें। बुजुर्ग अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देते हैं और युवा नए विचारों से रचनात्मकता जोड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की जड़ें गहरी होती है। त्योहारों के अवसर पर परिवार के बुजुर्ग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे केवल अनुष्ठानों का संचालन नहीं करते बल्कि उनसे जुड़ी कहानियाँ, परंपराएं और सीख अगली पीढ़ी को सुनाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को अपने इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से परिचय होता है। रक्षाबंधन पर दादी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, होली के पहले होलिका दहन की कथा, दीपावली पर रामायण से जुड़ी बातें, यह सब मिलकर एक सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आज के समय में जब बच्चे टीवी, मोबाइल और गेम्स की दुनिया में डूबे रहते हैं, त्यौहार उन्हें वास्तविक जीवन के रंगों से रूबरू कराते हैं। घर की सफाई में भाग लेना, माँ के साथ लड्डू बनाना, पापा के साथ बाजार जाना, यह सब बच्चों के लिए शिक्षाप्रद अनुभव होता है। बच्चों में सहयोग, अनुशासन, परंपरा, कृतज्ञता की भावना त्योहारों के दौरान सहज रूप से विकसित होती है। यह मूल्य भविष्य में उन्हें एक संवेदनशील और सामूहिक जीवन जीने का इंसान बनाते हैं। पारिवारिक त्योहारों की सफलता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल खाना बनाती है बल्कि आयोजन की योजना बनाती है, घर को सजाती है, बच्चों को तैयार करती है और मेहमानों की देखभाल भी करती है। त्यौहार के बहाने उनकी रचनात्मकता, संगठन कौशल और प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। महिलाओं का यह योगदान पारिवारिक समरसता का आधार बनता है। आज के डिजिटल युग में त्योहारों की परंपराएं कुछ बदली है लेकिन उनका उद्देश्य वही है, जुड़ाव। अब लोग वीडियो कॉल के जरिए भी त्यौहार मनाते हैं, ऑनलाइन मिठाइयां बेचते हैं और डिजिटल कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं साझा करते हैं। जब हम मोबाइल पर लगे रहते हैं तो हम केवल नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, मन से

0: नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि सबसे अच्छे रिश्ते वे होते हैं जिनमें आत्मीयता, संवाद और समय की साझेदारी होती है। तकनीक के सही उपयोग से आज भी पारिवारिक मेल मिलाप संभव है, बस आवश्यकता है संवेदनशीलता की। COVID-19 महामारी के दौरान जब सामाजिक दूरियां बढ़ी, तब त्योहारों ने भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। उस समय ऑनलाइन पूजा, वर्चुअल रक्षाबंधन और घर में ही सीमित तौर पर त्योहार मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, त्योहारों की आत्मा, प्रेम, सहभागिता और मेल मिलाप कभी नहीं मरती, बल्कि संकट के समय यह और अधिक आवश्यक हो जाती है। त्योहार सिर्फ परिवार को नहीं, समाज और समुदायों को भी जोड़ते हैं। जब मोहल्ले के लोग मिलकर होली का आयोजन करते हैं, दीपावली का सजावट की साझा करते हैं या ईद के मौके पर सभी को आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ केवल सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वहाँ समरसता का प्रतीक बन जाती है। त्योहारों और छुट्टियाँ परिवार के लिए स्वर्ण अवसर होते हैं। जब मिलकर खाना, सजावट, पूजा, खेल कूद या बाहर घूमने जाने जैसी गतिविधियाँ की जाती है, यह समय एक पूर्ण जुड़ाव का होता है। जो सदस्य कामकाज या पढ़ाई के लिए दूर रहते हैं, वे भी घर लौटते हैं। यहाँ न केवल उत्सव का अनुभव होता है, बल्कि रिश्तों की मरम्मत का समय भी होता है। यहाँ सामाजिक मेल जोल आगे चलकर बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होता है। वे समझते हैं कि विविधता में एकता क्या होती है और पारिवारिक सीमाएं कैसी समुदाय तक विस्तार पाती है। कई बार परिवार में कोई दुखद घटना या तनाव होता है, जिसके कारण आपसी रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। त्यौहार एक अवसर बनाता है जब लोग पुराने गीले शिकवे भूलकर एक दूसरे के पास लौटते हैं। दीपावली की रोशनी, ईद की मिठास, होली के रंग यह केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि भीतर की भावनाओं को भी आलोकित करते हैं। मन के दरवाजे खोलने का यही सुंदर अवसर होता है। परिवार मानव जीवन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण संस्था है। यहीं से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, संबंधों की गरिमा और सामूहिक जीवन की भावना सीखता है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में जब लोग समय की कमी, मोबाइल की व्यस्तता और व्यक्तिगत कार्यों में उलझे रहते हैं, तब एक साथ बैठकर खाना और मिलकर समय बिताना जैसे छोटे छोटे कार्य बड़े महत्व के बन जाते हैं। एक साथ खाना न केवल भोजन की प्रक्रिया है, बल्कि वहाँ एक ऐसा अनुभव है जो आपसे संवाद, प्रेम, समझदारी और रिश्तों को प्रगाढ़ बनाता है। इसी तरह मिलकर रहना यानी साथ में रहना केवल भौतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है जो परिवार को मजबूती देता है। आज जब वैश्वीकरण, तकनीकी व्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियाँ पारिवारिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है, त्यौहार की वह अवसर है जो पारिवारिक सौहार्द को पुनः जीवित करता है। ये केवल उत्सव नहीं, आत्मीयता का सेतु है जो एक की छत के नीचे अनेक दिलों को जोड़ते हैं। हमें इन त्योहारों को केवल रस्मों के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, संवाद, सहयोग और समर्पण के माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। जब पूरा परिवार मिलकर दीप जलाता है, तब न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि रिश्तों की गर्मी भी लौट आती है। अंततः यह स्पष्ट है कि त्यौहार केवल सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं का पालन मात्र नहीं है, बल्कि ये पारिवारिक मेलजोल, आपसी स्नेह और सामाजिक सामंजस्य के सशक्त माध्यम भी है। जब परिवार एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, तो रिश्तों में नई ऊर्जा, आपसी समझ और भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ती है। एक साथ खाना बनाना, पूजा करना और परंपरागत रीति रिवाज निभाना बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से जोड़ता है और बुजुर्गों को सम्मान और अपनापन का एहसास कराता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में त्यौहार हमारे ठहर कर अपने संबंधों को समय देने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें न केवल त्यौहारों को उत्साह से मनाना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे प्रेम, एकता और साझा खुशियों के संदेश को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। यही पारिवारिक मेल मिलाप की असली भावना है। अगली बार जब कोई त्यौहार आए, तो उसे अवसर बनाए ना केवल सजावट या मिठाई का, बल्कि सच्चे पारिवारिक मेल मिलाप का।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पारिवारिक मेल मिलाप में त्योहारों की भूमिका। वार्ताकार थी श्रीमती ज्योति दास साध। कहते हैं ना कि हम जो वार्ताएं आपको सुनवाते हैं या बताते हैं, उसके पीछे का एक मोटो क्या है या मोटिव क्या है, कभी सोचा है आपने कि ये परंपराएं हमें कैसे एक दूसरे से जोड़ती हैं? और ये परंपराएं हमें खुशियां दिलाने में मदद करती हैं, एक माध्यम बनती हैं, और ये त्योहार हमें प्रेम, अपनेपन और सद्भावना का साथ

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जी हाँ बहनों, ये जो म्यूजिक बज रहा था ये आपको भी नाचने पे मजबूर कर रहा होगा।
1: बिल्कुल, मैं भी नाचना चाहती थी आज, लेकिन आज सुबह उठते ही गर्दन ऐसी अकड़ी कि पूछे मैं तो। घर के हर सदस्य के पास अपना अपना इलाज था, कोई तो कहे बाम ले आया, किसी ने कहा कि तकिया धूप में रख दो है ना उस पर सो, और कोई तो बेलन ही ले आया गर्दन में बेलने।
0: चलो एक बेलन का तो इलाज पता था, आज अनविति ने दोबारा बता दिया कि बेलन से एक फ्राई और हो जाती है। फ्राई नहीं कहेंगे, दैट मींस कि वो आपकी एक तरीके की मसाज हो जाएगी। कहते हैं कि गर्दन की मसल्स को आराम देने के लिए हम उसको किसी चीज से रगड़ते हैं, दबाते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है और साथ में समस्याएं तो दूर करता ही है। लेकिन एक चीज और है ना कि हमारा पोस्चर अगर अनविति सही नहीं है
1: तभी दर्द का
0: तो भी दर्द करना पड़ेगा।
1: कई बार गलत पोस्चर की वजह से तो हम कभी कमर दर्द लेके बैठ जाते हैं, कभी सर दर्द, वो गर्दन दर्द।
0: और फिर जब हमारे नाचने की बारी आती है, हम किसी फंक्शन में होते हैं तो सामने वाला यही बोलता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
1: बिल्कुल। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लंबे समय तक बैठे हैं एक स्थिति में, तो कई बार जैसे कंप्यूटर पे खासकर हम काम करते हैं तो मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, या फिर हम जो मोबाइल का ज्यादा झुक कर प्रयोग करते हैं गर्दन झुका के, आजकल तो
0: गर्दन झुका के है, लेट कर है, बैठ कर है, यू आर इन द बैड पोस्चर, क्योंकि आप जिस तरीके से बैठे लेटे होते हैं आपको यही नहीं पता होता कि आप उसका स्क्रीन कैसे स्क्रॉल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए कैसा भी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन खुद को कुछ समय के लिए खड़ा करके स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियां अपने सही आकार में वापस आए।
1: बिल्कुल। और बैठते समय हमें पीठ भी सीधी रखनी चाहिए, और जरूरी बात यह है कि शारीरिक गतिविधियों की कमी से भी, यानी व्यायाम की कमी से भी मांसपेशियां

0: जी हाँ बहनों, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है और जाने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें जितनी संभालने की कोशिश करो ना उतनी ही हाथों से फिसल जाती है, जैसे कि लोग, रिश्ते और ये वक्त है ना?
0: और ये जैसे जैसे फिसल रहा है वैसे ही कहते हैं ना, जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, कभी कभी वो रिश्ते, वो लोग हमारे हाथों से फिसल जाते हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए कभी कभी थामना नहीं, जाने देना जरूरी होता है, सही होता है, शायद जिससे लौट आने के लिए फिर से इंतजार करना।
0: और ऐसा ही इंतजार आप अपने कार्यक्रम में फिर से करिएगा। और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपकी अपनी डॉक्टर स्वर्ण रेखा
1: और अनविति गोस्वामी को नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति अनुमति गोस्वामी और डॉक्टर स्वर्ण रेखा की थी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागू विद मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप

0: जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
0: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at this cenotaph and paid tribute to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी

0: मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य

0: परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंट कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रहे हैं। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खटसे ने कहा कि अनहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर

0: शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। समय मिलाइए श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान की आवाजों में वीर जारा फिल्म का ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में संतोष आनंद का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। फिल्म का नाम था प्यासा सावन। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। खबरों से रूबरू होते हैं, आपको सुनाते हैं सबसे पहले हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे

0: सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
0: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है, जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है, और रोज देखते भी हैं हम लोग। लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
1: राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:05 होते हैं। आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर।
1: खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।
0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद
1: और मैं हूं आपकी साथी शिवानी।
0: दोस्तों, उतार चढ़ाव तो जीवन का शाश्वत नियम है। इतिहास और विज्ञान दोनों गवाह है कि कोयला भी तब तक हीरा नहीं बनता जब तक कि अत्यधिक दबाव और विपरीत परिस्थितियों से नहीं गुजरता।
1: असल में कठिन समय हमारे वजूद को मिटाने नहीं बल्कि हमारे भीतर सोई हुई उस असीम ऊर्जा को, उस असीम शक्ति को जगाने के लिए आता है जिससे हम खुद ब खुद अनजान होते हैं।
0: बहुत सही बात की तुमने। और जब इंसान इस कड़वे सच को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है ना शिवानी, तो उसकी सोच का दायरा बदल जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि इस पूरी कायनात में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता।
1: बिल्कुल, जब हौसलों में उड़ान हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी लगने लगती है। आसमान जो है वो थोड़ा छोटा लगने लगता है। बड़ा या छोटा तो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है आनंद, जिसे हम खुद पर हावी कर लेते हैं।
0: दोस्तों, मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब हम किसी लक्ष्य को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो हमारा दिमाग डरने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि ये चीज मुझे कभी हासिल होगी ही नहीं। लेकिन जब हम उसे एक चुनौती की तरह देखते हैं, एक चैलेंज की तरह देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस पे रास्ते खोजने लगता है, नए रास्ते बनाने लगता है।
1: अरे, इसे ही तो विचारों का सुंदर मैनिफेस्टेशन कहते हैं।
0: बहुत सही बात।
1: जब मेहनत और सकारात्मक सोच की जुगलबंदी होती है तो बड़ी से बड़ी रुकावटें भी रेत के महल की तरह ढह सी जाती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी। और यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कठिन समय और विपरीत परिस्थितियां कभी भी रास्ते को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। रुकावटें तो बस हमारे भीतर के असली सामर्थ्य को परखने के लिए आती है।
1: बिल्कुल, मंजिलों की ऊंचाई देखकर कभी अपने कदम मत रोकिएगा साथियों। चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच उससे हमेशा बड़ी होती है। और वो कहते हैं ना, असंभव कुछ भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल। और जब मन में ऐसा अटूट विश्वास और संकल्प जाग जाता है तो जिंदगी का हर रास्ता एक खूबसूरत सफर बन जाता है। दोस्तों, ऐसा सफर जहाँ हवाएं भी है, जहाँ हमारी मंजिलों का पता बताने लगती है और हम उन्हीं हवाओं के सहारे सहारे उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं,
1: बहते रहते हैं। बिल्कुल। और अपने लक्ष्यों को कभी अपनी सोच से बड़ा होने ही ना दे। डर की इस दीवार को गिराइए, क्योंकि आपकी असीम शक्तियां, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके ही जगाने का इंतजार कर रही है।
0: तो दोस्तों, अपने भीतरी शक्तियों पर अटूट विश्वास रखिए। राह चाहे कितनी भी कठिन हो, बस कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि मंजिलों का रास्ता हमेशा आपके हौसलों से होकर गुजरता है। दोस्तों, हम युवाओं से बात कर रहे हैं, हम जैसे युवाओं से बात कर रहे हैं, और युवा शक्ति जो है उसमें इतनी ताकत है कि वह असंभव को संभव कर दे। ये शक्ति युवाओं की, हम अमावस्या के अंधेरों में भी चांद उगाने आए हैं। तो दोस्तों, आइए आपको सेलिब्रेट करते हैं इस गीत के साथ।
2: मैं अभिमन्यु कौल अपने सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हर नागरिक से यह वादा करता हूं कि हिंदुस्तान इस दुनिया में अपना सही मुकाम पाकर रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे यंग हिंदुस्तान यू कहें, मेरे यंगिस्तान पर पूरा भरोसा। जय हिंद।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, हमारा युवा साथी बढ़ भी रहा है और पढ़ भी रहा है, और अगर पढ़ रहा है तो वो तैयार रहता है इस समय के लिए जब हम उनसे पूछते हैं क्विज के दो सवाल, जिनके जवाब भी मिलेंगे आपको हमारी बातचीत में। तो आपको आज की बातचीत पूरे ध्यान से सुननी है,
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि पूरे के पूरे जवाब हमारी बातचीत में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज के हमारे दो सवाल है, वायुसेना द्वारा चलाए गए कारगिल युद्ध के दौरान अभियान का क्या नाम था। मैं अपना प्रश्न दोबारा बोल देता हूं कि कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था।
2: और हमारा दूसरा प्रश्न, गीतांजलि श्री को किस उपन्यास पर 2022 बुकर पुरस्कार मिला था। मैं प्रश्न दोबारा दोहराती हूं, गीतांजलि श्री को किस उपन्यास पर 2022 बुकर पुरस्कार मिला था।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे दो सवाल जिनके जवाब भी कार्यक्रम के अंदर ही है, तो देखते हैं आप लोग पता लगा पाते हैं या नहीं। तो सुनते रहिए पूरे ध्यान से युववाणी।

0: चला रहे हैं,
1: बहुत बुरा, बहुत बुरा
0: मार रहे हैं। संरक्षण कोई बहुत बड़ी बड़ा जो है विज्ञान नहीं है, बस हर इंसान को अपनी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर, किसी अन्य मोड़ पर एक पौधा जरूर रोपना,
1: जरूर जरूर रोपना चाहिए शिवानी। और प्रकृति का कर्ज हम तभी उतार सकते हैं जब हम कंक्रीट के इस जंगल के बीच हरी भरी सांस को थोड़ी सी जगह दे। और जब जंगलों की बात आती है ना, तो मुझे समुद्र और समुद्र के आसपास की जमीन के मिलन का वो जादुई सरहद याद आती है जिसे हम मैंग्रोव कहते हैं।
0: बिल्कुल, मैंग्रोव वन यानी कुदरत का वो अनोखा शाहकार जो खारे पानी की गोद में रहकर भी मीठी सी जिंदगी बुनता है अपने हाथों से। जहाँ लहरें जमीन से टकराती है, वहीं दलदली मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूती से जमाए ये वीर सिपाही की तरह खड़े रहते हैं, जिन्हें हमारे सुंदर वन गुजरात के तटों और अंडमान की वादियों में देखा जा सकता है।
1: और दोस्तों, इन वनों की विशेषता इतनी अनोखी है कि इनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आसमान की तरफ उठती है, मानो कुदरत को सलाम कर रही हो। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है दोस्तों, ये वो अभेद्य दीवार है जो समंदर के गुस्से, चक्रवात और सुनामी के थपेड़ों को अपने सीने पर झेल कर तटीय बस्तियों को तबाह होने से बचाते हैं।
0: वाकई में आनंद, ये पेड़ जमीन की रक्षा भी करते हैं और समुद्र के भीतर मछलियों, केकड़ों और अनगिनत समुद्री जीवों को उनके लिए एक सुरक्षित पालना यानी नर्सरी का भी काम करती है। यहाँ जिंदगी पानी के नीचे भी मुस्कुराती है और पानी के ऊपर भी चहकती है।
1: लेकिन
0: अफसोस, इंसानी बस्तियां और लालच ने इन्हें इस कदर काटा कि अब ये खुद खतरे में है।
1: यही तो इस दौर का सबसे बड़ा दर्द है कि जो पेड़ समंदर के गुस्से को सहकर हमें जिंदगी सौंपते हैं, हम उनकी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे हैं। जब ये वन लुप्त होते हैं तो ये सिर्फ पेड़ नहीं मरते बल्कि उनके साथ तटीय बस्तियों की सुरक्षा और समंदर के करोड़ों जीवों का बचपन भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है।
0: लेकिन अफसोस इस बात का भी है आनंद, इंसानी बस्तियां और ये जो लालच इन्हें बस इस कदर काटा कि अब ये खुद खतरे में है। इसी दर्द को समझते हुए यूनेस्को ने 2015 में एक बेहद जरूरी पहल की थी।
1: बिल्कुल, हर साल 26 जुलाई यानी आज ही के दिन इसी वजह से हम मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, ताकि दुनिया जाग सके, दुनिया पहचान सके कि मैंग्रोव वन हमारे लिए कितने जरूरी है
0: और कितने हमारे जीवन में अपना योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इस दिन को मनाने का कारण भी यही है आनंद, कि लोग समझें अगर मैंग्रोव उजड़े तो सुनामी और चक्रवात सीधे हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे, ये हमारी एक ढाल की तरह है।
1: बिल्कुल सचमुच, और इन्हें बचाने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। बस जब भी समंदर किनारे घूमने जाए तो वहां प्लास्टिक का कचरा ना फेंके, क्योंकि प्लास्टिक इनकी सांस रोक देता है।
0: और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नए पौधे लगाने की आदत भी डाल सकते हैं, तटीय विकास ऐसा हो जो इन वनों को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सके, इनको संरक्षित किया जा सके।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप संरक्षण चाहते ही हैं तो आपको कुछ कुछ आदतें अपनी बदलनी होगी। और वास्तव में जब आप ये आदतें बदलेंगे तब आप इस प्रकृति की गोद में अपने आप को वैसा ही पाएंगे जैसे कोई रमता जोगी हो जो इधर से उधर यूं ही आनंद में टहलता रहे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, प्रकृति, प्रकृति कोई बाहर बिखरा हुआ नजारा नहीं है, हमारे भीतर बहती हुई एक जिंदगी है। ये जो दरख्त चुपचाप खड़े होते हैं ना, ये दरअसल धरती के वो फेफड़े हैं जो हमारे हिस्से का जहर खुद पी जाते हैं और बदले में हमें जीवन की ताजा हवा सौंप देते हैं।
3: कितनी अजीब बात है ना आनंद, जो पेड़ हमें फल, छांव, हवा और जीने की वजह देते हैं, हम उन्हीं की जड़ों पर कुल्हाड़ी

दोस्तों, हमारा देश भारत एक खूबसूरत सा देश है। इसकी माटी में सभ्यता की महक है, इसकी हवाओं में एक अजब सा सुकून है।

0: बिल्कुल सही आनंद और इस पावन धरा की शान ही निराली है। पर जानते हो इस पावन माटी को महकाए रखने के लिए सरहदों पर कोई अपना लहू बहा रहा है, हमारी सेनाएं ही इस अमन की असली रखवाली है।
1: सही कहा, और वो चट्टान बनकर सरहद पर खड़े हैं, तभी हमारा देश आज सुरक्षित और बुलंद खड़ा है। जब भी मैं इनके इस निस्वार्थ शौर्य के बारे में सोचता हूँ तो दिल श्रद्धा से भर जाता है। सोचता हूँ कई बार कि वो कितना प्यार करते होंगे इस भारत माता से, कि ताज हिमालय का है सुशोभित, कण कण तेरा आंचल है, माथे की रेखाएं लगती गंगा यमुना चंबल है, गालों पर है थार खेल था, कान लगे विध्याचल सा, ठोड़ी प्यारी कन्याकुमारी, कान लगे पूर्वांचल सा, इंकलाब के दीवानों की तू ही पहली चाहत है, सबसे प्यारा देश हमारा भारत है वो भारत है।
0: क्या बात है, और इसी अदम्य शौर्य की गवाही देता है इतिहास का वो पन्ना जिसे हम कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। हर साल 26 जुलाई यानी आज ही के दिन आते ही दिल गर्व और आंसुओं के साथ भर जाता है।
1: दोस्तों, साल 1999 की वो तपती गर्मियां जब दुश्मनों ने धोखे से हमारी 18,000 फीट ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उनका इरादा श्रीनगर ले हाईवे NH1D को काट कर कश्मीर को हमसे जुदा करने का था,
0: पर वो भूल ही गए थे कि हमारी सेना के इरादे इन पहाड़ों से भी कई नीचे हैं। भारतीय जाबाजों ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, -15 डिग्री तापमान में आनंद बिना किसी आड़ के मौत के सामने हमारे वीर डट कर खड़े रहे।
1: सच में शिवानी, उस मंजर और उस भीषण संघर्ष को बयां करती ये दो पंक्तियां सीधे दिल को छूती है कि वो लहू बहाकर अपना सरहद को सींच गए, जो मौत को गले लगाकर जीत को अपनी तरफ खींच गए।
0: क्या बात है, नमन है ऐसे वीरों को। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर से आसमान से आग बरसाई तो नीचे फोर्स तोपों ने दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा दिए। ये दिल मांगे मोर कहते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नायकों ने मौत को भी मात दे दी।
1: दोस्तों, और पूरे 60 दिनों तक उस खूनी मंजर के बाद 26 जुलाई 1999 को तोलोलिंग और टाइगर हिल पर फिर से हमारा तिरंगा शान से लहरा उठा, लेकिन इस फतह के लिए भारत माँ के 527 लाल हमेशा के लिए सो गए।
0: और हम सभी देशवासी उन अमर शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी सेना के हर जवान को दिल से शुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये वो है तो हम हैं, वे हैं तो ये हिंदुस्तान है।
1: तो आइए श्रोताओं, आज इस पावन दिन पर अपनी आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा करके एक साथ कहे जय हिंद जय भारत।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: आनंद हमारे देश में आज भी जब समानता की बात होती है ना, तो लोगों के विचार बड़े अजीब से आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कागज पर लिख देने से ही सब कुछ बराबर हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही, और हमारे समाज में अक्सर ये मान भी लिया जाता है कि महिलाओं के लिए कुछ काम तय है, कुछ काम पुरुषों के लिए तय है। आज भी लोग बेटा बेटी में फर्क करने से बाज नहीं आते हैं।
0: सोच का दायरा बदलना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: इस बारे में। और लोग सोचते हैं कि समानता का मतलब सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना है, जबकि असली समानता तब आएगी जब उन्हें हर क्षेत्र में काम करने के बराबर मौके और आजादी मिले।
1: और यही बात दफ्तरों या फैक्ट्रियों में भी लागू होती है दोस्तों। जब तक हर इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश में असली समानता आ ही नहीं सकती।
0: वैसे आनंद, इस समानता और न्याय की लड़ाई को सिर्फ हम ही नहीं लड़ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर इसके लिए बहुत बड़ी संस्था भी बनाई गई है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी की ILO कहते हैं।
1: हाँ, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, तब दुनिया के बड़े नेताओं ने मिलकर वर्साय की संधि के तहत इसकी स्थापना की थी।
0: और उनका मानना था कि अगर दुनिया में हमेशा के लिए शांति चाहिए, तो समाज के सबसे निचले यानी तबके यानी मजदूरों और कारीगरों के साथ न्याय होना सबसे पहली शर्त है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब काम करने वालों का शोषण हुआ है, तब तब क्रांतियां हुई है, बड़ी लड़ाइयां हुई है। इसीलिए इस संगठन को शुरू से ही इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था।
0: और इसकी सबसे खास बात पता है, इसका काम करने का तरीका है। इसे त्रिपक्षीय संस्था भी कहा जाता है, जहां तानाशाही के लिए कोई जगह है ही नहीं।
1: हाँ, यहाँ कोई भी नियम अकेले सरकार नहीं बनाती। इस मंच पर तीन पक्ष एक साथ बैठते हैं, विभिन्न देशों की सरकारें, कंपनियों के मालिक और खुद श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि भी।
0: तीनों पक्ष एक ही टेबल पर बैठकर

0: चर्चा करते हैं और आपसी सहमति से वैश्विक श्रम कानून तय भी करते हैं। यही वजह है कि इसके फैसले इतने व्यावहारिक भी होते हैं।
1: दोस्तों, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है डिसेंट वर्क, यानी कि गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देना, जहां कामगारों को सुरक्षित माहौल मिले, उनकी डिग्निटी बढ़े और उचित वेतन भी मिले।
0: इसके साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव को भी मिटाना, महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन दिलाना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करना भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है।
1: इसी के साथ शिवानी, संगठन के कामों की वजह से आज हमें दुनिया भर में 8 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी और महिलाओं को मिलने वाला मैटरनिटी लीव जैसे अधिकार भी मिले हैं।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं आनंद, समय के साथ इस संगठन ने खुद को बदला भी है। और कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। आज के डिजिटल दौर में जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स, ये उनके अधिकारों के लिए भी नए सुरक्षा कानून बना रहा है।
1: दोस्तों, इसके लाभ पूरी दुनिया को मिल रहे हैं। इसके कड़े नियमों के कारण कंपनियों में हादसों में कमी आई है, मजदूरों का शोषण रुका है और कामगारों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।
0: और इसी निस्वार्थ काम की वजह से साल 1969 में संगठन को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: अरे वाह, वाकई आज समझ आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी ये संस्था हमारे रोजमर्रा के कामकाजी जीवन को कितना सुरक्षित और कितना बेहतर बनाती है।
0: दोस्तों, समानता और सम्मान की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। लेकिन चलिए, इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज सुनते हैं हमारे,
1: बिल्कुल एक सुरीला गाना हम सुने और एक ऐसा गाना सुने जहां पर हमारे देश की बात हो, क्योंकि आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस और ऐसा दिवस जहां हमारे मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट के आज उछाले मार रही है।
0: बिल्कुल,
2: देश मेरा रंगरेजी है बाबू।

0: वास्तव में शिवानी देश हमारा बड़ा रंगरेज है, लेकिन कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हमारे जीवन से ये सभी विविधताएं हटा दी जाए, ये किताबें हटा दी जाए, ये कहानियां हटा दी जाए, ये कविताएं हटा दी जाए, तो ये इंसानी जिंदगी कैसी दिखेगी।
1: सच कहूँ आनंद, तो बिना साहित्य के इंसान बिल्कुल बेजान हो जाएगा, ऐसा समझो अंदर से मर ही जाएगा, जैसे बिना नमक के खाना।
0: हाँ।
1: साहित्य का हमारे जीवन में सिर्फ उपयोग नहीं है, वह तो मनुष्य के जीने का एक अधिकार है।
0: बिल्कुल सही बात कही, और कहा भी जाता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुछ विषाणहीन। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहित्य का मतलब सिर्फ कविताएं या कहानियां पढ़ना है, लेकिन असल में साहित्य मनुष्य के जीवन का आईना भी है और मार्गदर्शक भी। यह हमें सहानुभूति सिखाता है। जब हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते हैं, बल्कि किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्कृति या किसी अजनबी के सुख दुख को महसूस करते हैं
1: और पहुंच जाते हैं किसी काल्पनिक दुनिया में। और सोचो आनंद की समाज को बदलने में भी साहित्य ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। जब समाज में कोई कुप्रथा होती है या कोई बड़ी क्रांति आती है तो सबसे धारदार हथियार जो है वो लेखक की कलम ही बन जाती है
0: हमेशा।
1: और प्रेमचंद की कहानियां हो या रेणु की उपन्यास हो, इन्होंने सीधे इंसानी चेतना पर चोट की है। साहित्य हमारी आत्मा को परिष्कृत करता है, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।
0: शिवानी, साहित्य सच में अलग अलग संस्कृतियों और इंसानी जज्बातों को आपस में जोड़ने वाला सबसे मजबूत पुल है। और जानते हो, जब शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग इन शब्दों के जादूगरों को सलाम करते हैं। इसी इंसानी जज्बात और बेहतरीन कहानियों को सम्मानित करने के लिए दुनिया में कई बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं।
1: और आनंद, पुण्य और सम्मान की बात से मुझे याद आया कि इसी वैश्विक मंच को एक सबसे चमकीला सितारा है बुकर पुरस्कार।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और कहानियों के इसी गहरे महत्व को सराहने के लिए ही तो इसकी शुरुआत की गई थी।
0: तुमने बिल्कुल सही समय पर सही धागा पकड़ा शिवानी। जब साहित्य की पूरी दुनिया को एक तरह से जोड़ता है तो बुकर प्राइज इस जुड़ाव को एक त्योहार की तरह मनाता है। दरअसल साल 1969 में इंग्लैंड में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो हर साल किसी एक सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक उपन्यास यानी कि फिक्शन को दिया जाता है। नियम बड़ा सीधा है, किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो, उसका प्रकाशन यूके आयरलैंड में हुआ हो, इसे जीतने वाले लेखक को 50,000 पाउंड की राशि के साथ साथ रातों रात पूरी दुनिया में एक अद्भुत पहचान मिल जाती है।
1: क्या बात है। और जहां तक मुझे याद है आनंद, साहित्यानुरागियों के लिए इसमें एक और खूबसूरत मोड़ भी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये उन महान कृतियों के लिए है जो मूल रूप से दुनिया की किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन उनका अंग्रेजी में अनुवाद होना जरूरी है। इसमें सबसे प्यारी बात ये है

0: की इसकी पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर बांटी जाती है, क्योंकि साहित्य की आत्मा को दूसरी भाषा में ढालना भी तो एक तपस्या ही है।
1: और तुम्हें पता है शिवानी, साल 2022 का वह ऐतिहासिक लम्हा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। किसी भारतीय भाषा की मूल कृति के लिए ये पहला और गौरवशाली मौका था।
0: यही तो साहित्य का असली जादू है आनंद, जो हमारी बातों और हमारे एहसासों को हमेशा के लिए तरोताजा बनाए रखता है।

0: दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे दो सवाल पूछे थे, तो अब वक्त है उनके जवाब आपको बताने का। और हमें पता है हमारे दोस्तों ने उनके जवाब सोच लिए होंगे, और क्योंकि उन्होंने हमारा कार्यक्रम पूरे ध्यान
1: ध्यान
0: से
1: से सुना
0: सुना है,
1: था,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उन्हें कहीं ना कहीं ये पता भी है कि इनके आंसर्स क्या है। अब मिला लीजिए कि आप अच्छे से कार्यक्रम सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। हमारा पहला सवाल था कि कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सफेद सागर।
1: और हमारा दूसरा सवाल था कि गीतांजलि श्री को किस उपन्यास पर 2022 में बुकर पुरस्कार मिला था, जिसका सही उत्तर है रेत समाधि।
0: दोस्तों, हमें पता है कि आप नियमित रूप से जो है वो अध्ययनशील रहते हैं, रोज पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपको रोजगार सूचना बताना भी हमारा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल
0: तो आज की जो रोजगार सूचना है वो है आरआरबी की ओर से। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 पर भर्तियां जारी कर दी गई है, और इनके पदों की संख्या 6,557 बताई गई है, और अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 29 जुलाई, जो बहुत पास में है दोस्तों। तो बिल्कुल देर मत कीजिए और अभी जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.com को सर्च कीजिए। दोस्तों, घड़ी की सुइयां कुछ हमें इशारा कर रही है, बता रही है कि आज का कार्यक्रम जो है भैया तुम्हारा बड़ा शानदार था। तुमने कितनी सारी बातें की, और आपसे बातें करते हुए मन तो जो है भरने का सवाल ही
1: नाम ही
0: पैदा
1: नहीं
0: नहीं
1: ले
0: होता
1: रहा,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: और लेकिन फिर भी समय की अपनी मर्यादा है, समय के अपने अनुशासन है। हमने आज बहुत सारी बातें की, और निश्चित रूप से ये बातें यूं ही हवाओं में उड़ते हुए आपके कानों तक पहुंचे,
1: पहुंच गई होंगी।
0: आपके हृदय तक यूं ही बनी रहे। हमारा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर के डोला मारू चैनल से कार्यक्रम युववाणी। हौसलों और सपनों को पंख देने वाली, उम्मीदों को नई परवाज देने वाला ये कार्यक्रम युववाणी एक ऐसा युवा मंच साझा मंच है जहां होती है समसामयिक मुद्दों की गर्माहट, फिल्मी गीतों की ठंडी फुहारों के साथ सच्ची दोस्ती का अटूट विश्वास, आने वाले कल की ढेरों जानकारियां और सूचनाओं से भरा हुआ यह युववाणी कार्यक्रम आपके लिए आज लेकर के आए थे शिवानी सोनी और आनंद कुमार पुरोहित। तो यदि आप जानना चाहते हैं कई सारी बातें और शेयर करना चाहते हैं अपने मित्रों से, दोस्ती की अटूट विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो सुनते रहिएगा हर रोज शाम को 5:05 पर कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:55 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोता, आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे 6 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा मधुर सुरों सजी फिल्म संगीत की आपकी अपनी महफिल, जिसमें आज आप सुनेंगे, आज के कलाकार होंगे मनोज कुमार। शाम को 6:30 पर रुक करेंगे जयपुर केंद्र की ओर, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में। 6:40 पर जयपुर से ही प्रसारित होगा विशेष स्तंभ जिले की चिट्ठी। 6:45 पर समय रहता है मरुधरा की अपनी भाषा में, हमारी अपनी राजस्थानी मायड़ बोली में, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का। संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे, कार्यक्रम ग्रामीण जगत। लोक गीतों और जानकारियों के इस खंड में आज आपके साथ होंगे सत्यनारायण शर्मा और कुंजीलाल स्वामी। 7:45 पर दिन भर की थकान मिटाने के लिए रसमय सुगम संगीत सुन पाएंगे आप।

0: मधुर सुरों से सजी फिल्म संगीत की महफिल लेकर पुनः आपके लिए उपस्थित होंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर हमारे सभी लोक संगीत प्रेमी श्रोताओं के लिए पेश किए जाएंगे लोक गीत। 8:45 पर दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे समय रहता है News@9 का। News@9 पर रुबेले पर्दे पकी समुद्र दिनों के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत होंगे आपके लिए लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से आज की कलाकार होंगी संतूर वादक विदुषी वर्षा अग्रवाल। इनसे आप सुनेंगे संतूर वादन। तो ये आपको पुनः बता दें रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुनेंगे संतूर वादन। आज की कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल। श्रोताओं रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के पश्चात आज की इस सभा का समापन किया जाएगा। आशा है सुरों और सूचनाओं का यह सफर आपकी शाम को और अधिक जानकारी वर्धक और मनोरंजक बनाएगा। तब तक शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। आशा है आज का यह प्रसारण आपकी स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी बीकानेर से। समय हो चुका है 6:00। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले।

0: ये हमारा उद्देश्य था और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। संध्या के 6:05 होते हैं। लीजिए सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में प्रारंभ करने से पहले आज हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज हम मना रहे हैं 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। 1999 की ये बात आज तक ऐसी लगती है मानो बिल्कुल सामने ही खड़ी हो, जब हम एक ऐसे देश से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे हम लोग ऐसी चीज़ के

बारे में अपना लोहा मनवा रहे थे, जहां पर हमारे देश की आन बान और शान हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। सर्दियों की आड़ में पड़ोसी देश के सेना, नियमित सैनिक और घुसपैठियों ने एलओसी पार करके करगिल, द्रास, बटालिक, मश्को, काक्सर, इन क्षेत्रों की ऊंची ऊंची चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था और इन चोटियों से श्रीनगर लेह को जोड़ने वाली तत्कालीन NH-1A पर ये लोग आसानी से नजर रख सकते थे, जबकि हम कहीं नीचे से ऊपर जाने के प्रयास में अपनी बहुत सारी शक्ति शौर्य दिखा रहे थे। मार्ग बाधित हो जाने पर लद्दाख तक सेना की रसद और सैन्य आपूर्ति सीधे प्रभावित होती थी। तब हम लोगों ने चलाया, हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के चलाया था, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया वायु सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा ऑपरेशन तलवार, और हमारी थल सेना ने मुकाबला किया ऑपरेशन विजय के रूप में। हम उन सभी के सभी सैनिकों को आज नमन करते हैं जिन्होंने अपना अमर बलिदान दिया। लगभग 527 भारतीय सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हुआ। इसमें ऐसा नहीं, 1363 सैनिक, हमारे वीर सैनिक सिपाही घायल भी हुए, लेकिन हमने अपनी हार नहीं मानी और लगभग 2 महीने की लगातार जंग के बाद अपनी विजय हासिल की। ऐसे ही फिल्म संगीत और बॉलीवुड भी इन सभी के सभी सूचनाओं से, समाचारों से दूर नहीं रह सकता। तो एक ऐसे कलाकार को आज हम फिल्म संगीत कार्यक्रम में चयन करने का प्रयास करते हैं, जिसको उनके प्रदर्शन के द्वारा, इनके एक्टिंग के लिए भारत कुमार का नाम दिया गया था। ये और कोई नहीं, आपके और हमारे सभी के चहेते कौन है? मनोज कुमार।

तो श्रोताओं, जब भी हम कभी भी सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में राष्ट्रभक्ति और जनगण मन के चेतांत वतन सिरों की बात करते हैं, तो एक चेहरा हमारी आंखों के सामने स्वतः ही उभर के आता है। हाथ से चेहरे को छिपाकर चिंतन करती हुई मुद्रा, आंखों में देश प्रेम का अगाध समंदर उछाले मारता हुआ, लबों पर देश के स्वाभिमान के तराने। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत के युग पुरुष, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित स्वर्गीय मनोज कुमार जी की, जिन्हें पूरा देश भारत के नाम से जानता है।

कैलेंडर में कोई सामान्य तारीख हो सकती है, लेकिन हर भारतीय के दिल में इसका अर्थ एकदम गहरा है, 26 जुलाई। यह दिन उस वीर सैनिकों के अदम्य साहस, ताकत और राष्ट्रभक्ति को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये उन माताओं के साहस को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने बेटे इस देश के नाम कर दिए। उन पत्नियों के धैर्य को सलाम करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन साथी को तिरंगे में लिपटा हुआ स्वीकार किया। उन बच्चों के सपनों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने पिता को, अपनी माता को खो दिया, लेकिन उनके साहस पर हमेशा गर्व किया। वर्ष 2026 में इस बार हम 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं।

आपको बतला दें साथियों, जो साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की सर्वोच्च मिसाल करगिल विजय हम लोग मना चुके हैं, करगिल के अमर वीरों ने साबित किया था कि विपरीत परिस्थितियां भी उस सैनिक का कोई रास्ता नहीं रोक पाती जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। उनकी वीर गाथाएं आज भी भारतीय को याद दिलाती हैं कि आजादी और सुरक्षा का मूल्य केवल शब्दों से नहीं वरन अनगिनत बलिदानों से चुकाया जाता है। तो हमने इस कारगिल विजय में जिन जिन सैनिकों को खोया, हम सभी जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र से सम्मानित, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र प्राप्त करने

मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले संजय कुमार, महावीर चक्र प्राप्त करने वाले मरणोपरांत कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त करने वाले मेजर राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर तिगेंद्र कुमार। इन सभी का साहस और अतुलनीय बलिदान हमारे लिए हमेशा ही गर्व का विषय है। इन्हीं को याद करके या इन्हीं के जोश और इनकी देशभक्ति को देखते हुए 1965 का दौर याद कीजिए। भारत पाक युद्ध के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने मनोज कुमार की फिल्म शहीद 1965 में जो बनाई गई थी उसको देखा, जो अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। फिल्म से प्रभावित हुए और शास्त्री जी ने मनोज जी से कहा कि इस नारे को, जय जवान जय किसान, इस नारे को आप पर्दे पर जीवंत करेंगे। बस फिर क्या था, भारतीय फिल्म जगत, सिनेमा जगत की एक कालजयी रचना का इंतजार बस खत्म ही होने वाला था और वो कालजयी रचना थी उपकार, जिसका गाना अभी आपने थोड़ी ही देर पहले सुना। एक और ऐसी रचना आपको सुनवाते हैं पूर्व और पश्चिम से महेंद्र कपूर की आवाज में, ये गीत।

मनोज कुमार जी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक अद्भुत निर्देशक, लेखक और संपादक भी थे। उनकी फिल्मों का कैनवास केवल मनोरंजन करना नहीं होता था, वह देश के प्रति अपने कर्तव्य, किसान और जवान के प्रति अपना सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते थे। उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से नवाजा गया था। अप्रैल 2025 में भारत कुमार ने अपनी अंतिम सांसें ली और यह महान सितारा अनंत में लीन हो गया। लेकिन कला और विचार कभी मरते नहीं ना, तो जब तक भारतीय सिनेमा रहेगा, जब तक देश की मिट्टी से अन्न उपजेगा और जब तक तिरंगा हवा में लहराएगा, मनोज कुमार जी की बनाई फिल्में और उनके गीत हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाते रहेंगे। आकाशवाणी परिवार की ओर से, आप सभी श्रोताओं की ओर से, हम सिनेमा के सच्चे भारत मनोज कुमार जी के इस महान योगदान को शत शत नमन करते हैं। आज के देश के हमारे ये सितारे ही हैं जो आपको और हमको लगातार देशभक्ति की अलख जगाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। अब आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं। इसके उस पार हम करेंगे इस फिल्म संगीत कार्यक्रम का

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर संध्या के 6:30 होने को आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात होगी जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात होगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसके माध्यम से हमारे देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों की संस्कृति और वहां की चुनौतियों तथा रहन सहन के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों में देश प्रेम का विशेष जज्बा देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक

0: युवाओं ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और अपने अनुभव सुनाए। राजस्थान के जालौर से माय भारत वॉलंटियर सुनील कुमार ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
1: मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने हमारे जरा कितना युवा है सीमावर्ती गाँव में जान लो देखो खाली चीजें महसूस करने में अवसर मिले। मैं राजस्थान के सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगी उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आई डी और फोन पे मैसेज आया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गाँव का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि उसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पर जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समाज की वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा है, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य सांस्कृतिक विरासत और विकास की आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराता है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। ये भारत के क्षेत्र का पहला रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर आज वीर सैनिकों का स्मरण किया और कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनसून का समय जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम है। सरकार द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कैच द रेन अभियान का जिक्र किया और लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के प्रयास को सराहनीय बताया।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। वहीं पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने हस्तकला को प्रोत्साहित कर बुनकरों को सम्मान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच मन की बात

0: की 136वीं एपिसोड को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाली में मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। राज्य के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर आज देश प्रदेश में वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इधर राज्यपाल हरिभाउ बागड़े ने कहा कि करगिल विजय दिवस केवल सैन्य विजय का स्मरण नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को नमन करने का पावन अवसर है। श्री बागड़े करगिल विजय दिवस के उपलक्ष में जोधपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 16 वीर सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन वीर जवानों की शहादत और निष्ठा पर हर भारतीय को गर्व है। इधर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर अमर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में करगिल शौर्य वाटिका में निर्मित स्मारक स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है ताकि आमजन को सुविधा हो सके।
1: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था, लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश, यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालौर जिले के सांचौर में आज बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया। ये बस सांचौर से गुजरात जा रही थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जालौर में भी रुक रुक कर बरसात होती रही। बाड़मेर में आज बारिश का दौर जारी रहा। झुंझुनू जिले में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राज्य में कई स्थानों पर हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 28 जुलाई से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय

0: देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशी लाल। आज करगिल दिवस है। इस मौके पर जिले के पतासर गांव के करगिल शहीद भीकाराम मूड की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर करगिल के सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग 79,000 रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना राजस्थान की न केवल पहली रिफाइनरी है बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। रिफाइनरी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की इस धरती से भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस मौके पर श्री मोदी ने रिफाइनरी कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से तकनीकी जानकारी ली और रिफाइनरी की महिला कर्मचारियों से बात करके उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस रिफाइनरी के उद्घाटन से अब क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास और निवेश के द्वार खुलेंगे। साथ ही रिफाइनरी से जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग लगने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए इस 5 दिवसीय विशेष अभियान में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को सर्वे के दौरान एनीमिक की 100% स्क्रीनिंग करवाने, HPV टीकाकरण 100% करने और जननी सुरक्षा और लाडो प्रोत्साहन योजना के बकाया मामलों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूलों में HPV टीकाकरण 100% करने को कहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में ACB कार्यालय बालोतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया। आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आमजन से अपील की गई कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वैध कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो उसे रिश्वत नहीं दें और तुरंत इसकी ACB से शिकायत करें। शिकायत मिलने पर ACB द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को लेकर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जलदाय, विद्युत तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की ओर से नगर विकास न्यास बालोतरा के सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट निवेश को मानकों के अनुरूप बढ़ावा देना, परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना, विवादों का प्रभावी समाधान तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराना था। जिले में देर से आए मानसून की बारिश ने राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई की है। ग्रामीण इलाकों में तालाबों और टाकों में पानी की आवक बढ़ने से पेयजल की समस्या का भी समाधान हो रहा है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रे तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथ है बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इनमें लोगों ने भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश में न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करीजियो। और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा में 144 नई बसा भेड़ी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। समाचार साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम घणो खास है। इन मार्फत देशरा नौजवाना ने सरहदी गांवों की संस्कृति और वठारी चुनौतियां और रहन सहन रा बारा में जानन रो मौको मिले है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस री मार्फत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रा प्रतिभागियों साथ बतल करता है प्रधानमंत्री कहो के सरहदी गांवों में वठारा लोगों में देश प्रेम रो खास जज्बो देखने मिले है। एक कार्यक्रम री मार्फत देश रा सगला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों री नुमाइंदगी कर रिया 432 नौजवानों साथ प्रधानमंत्री बतल करी और हमारा अनुभव सुनिया। राज्य रा जालोर माय भारत वॉलेंटियर सुनील कुमार आपरा अनुभव साझा करता प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दियो।
1: मैं बड़ो आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने हमारे जरा कितना ही युवा है सीमावर्ती गांव में जाने देखने में खाली चीजें महसूस करने में अवसर मिला। मैं राजस्थान के सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचाली उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे नया भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आई डी और फोन पे मैसेज आया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांव का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि उसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समाज है वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा है, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों ने भारत रा सरहदी हल्का रा सामाजिक आर्थिक दिखाव सांस्कृतिक विरासत और विकास री आसों सीधा पिछाण करावे है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय एकता और सीमाई गवारा रणनीतिक महत्व री गहरी समझ ने बढ़ावो देवे है। ध्यान जोग है कि ये कार्यक्रम स्वरूप प्रतिभागियों रो चुनाव देश भर में ऑनलाइन क्विज होल्डरी मार्फत करीजो जिनमें 3,32,000 नौजवाना हिस्सो लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक मदद और दोस्त देशों रा मामला में बरोबर नवी ऊंचाइयां छू रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि भारत आपरा तकनीकी भूता ने बरोबर बधारियो है। दुनिया रो भरोसो भारत रा हिफाजती उपकरण और तकनीक माथे बधरियो है। वणा कहो कि लाडला दीतवार ने विक्रम वन रा कामयाब प्रक्षेपण हर भारतीय रो मान बधियो है। वो भारत रा निजू हल्कारो पहलो रॉकेट है। प्रधानमंत्री करगिल विजय दिवस माथे आज वीर सैनिका ने याद करिया और कहो के ओ दिन देशवासियों ने आपरा बहादुर सैनिका री असाधारण ताकत ने याद दिरावे है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री पानी बचावन रो जिक्रो करता कहो के मानसून रो बगत जल संरक्षण सानू सब ऊंचो को है। सरकार का न्यो खास अभियान ई चलाया जावे है वरना कैच द रेन अभियान रो जिक्रो करियो और लोगों री इनमाय बढ़ चढ़ने हिस्सो लेवन री कोशिश ने श्रवण जोग बताया।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

0: इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री कहो के कुछ दिन पहला ग्लासगो में सुरविया राष्ट्रमंडल खेला में भेड़ा खिलाड़ियों रो पूरो देश साहस बधारियो है। श्री मोदी गणेश उत्सव रे दौरान सगलाओं पीओपीओं बनी मूर्तियां रिठोड़ माटियों बनी गणेश मूर्त री पूजा करन री अरज करी। प्रधानमंत्री कहो के देश भर में 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनायो जायला। ओ दिन देश रा बुनकरा रा हुनर रचनात्मकता रा सम्मान रो प्रतीक है। वना हस्तकला ने बढ़ावो देर बुनकरा ने सम्मान देवन री अरज करी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त ने मनाया जाने वाला स्वतंत्र दिवस रा बारा में बात करी और कहो के ओ दिन हर भारतीय सारू मान रो दिन है।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम में लेर उमा नजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर और सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के साथ मन की बात रा 136वीं कड़ी ने सुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली माए मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। ई मौके न्यारा न्यारा जन नुमाइंदा और लोग मौजूद रिया। राज्य री दूजी ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने उमावरे साथ सुनी जिया। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। कारगिल विजय दिवस माथे आज देश प्रदेश शहीदा ने नमन करे। ई मौके 1999 रा करगिल युद्ध में देश री हिफाजत करता ठाव बलिदान देने वाला भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पण करी जावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर सैनिका ने नमन करता सोशल मीडिया पोस्ट में कहो के सैनिकारी अद्भुत ताकत, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बल री ठावी परंपरा री मिसाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो के करगिल युद्ध भारतीय सेना रा इतिहास रो सोना मंडियो पाठ है। अठीने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो के कारगिल विजय दिवस फगत फौजी जीत री याद नहीं है बल्कि देश री अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू भारतीय सैनिका कानियों करीजा ठावा बलिदान और अदम्य साहस ने नमन करण रो पावन मौको है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस रे मौके जोधपुर माए क्रीड़ा भारतीय कानियों विया कार्यक्रम माए बोल रिया हा। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। अठीने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वीर सैनिका ने श्रद्धांजलि देवना कहो के आ वीर जवाना री शहादत और निष्ठा माथे हर भारतीय ने मान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री रो कामकाज संभालियो। धर्मेंद्र प्रधान रे इस्तीफो देवन रे पछे काले वाने नुआ शिक्षा मंत्री बनाई जहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी नुवी जिम्मेदारी सौंपण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार प्रकट करियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुरा हीरापुरा बस टर्मिनल रोडवेज री 144 नुई बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। ई मौके मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सारू जाग जगाउन रो संदेश देवता सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलावां ने हेलमेटी बांटिया। वणा प्रदेशवासियों यातायात कानून री पालना करण और दुपहिया वाहन चलावती बगत जरूरी हेलमेट पहरण री अरज करी। मीडिया साथे बतल करता मुख्यमंत्री कहो कि सरकार जन कल्याण जुड़िया हर हलका माए तेजी काम कर रही है। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश माए बरोबर सार्वजनिक परिवहन सेवा रो पसारो करो जावे जिणु लोगों ने हिफाजती सरल और सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया वे सके।
2: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम में उप

मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। और अब है मौसम। प्रदेश रा कई जिला माए मानसून सक्रिय बने उड़ो है। भीलवाड़ा माए आज सवार हुई हल्की बिरखा रो दौर चालतो रियो। जालोर माए रुक रुक ने बिरखा वहती रही। झुंझुनू जिला माए दोपहर पछे कई थोड़ा बिरखा होवणु मौसम सुहावणो वह गयो। वठे राज्य माए कई थोड़ा वेरी बिरखाऊ जलाशय माए पानी री आवक बनी उड़ी है। मौसम केंद्र मुजब आज राज्य रात दिखनाद आथुणी हल्का माए हड़काऊ मजला और कठे कठे तेज बिरखा होण री आस है। महकमो आवती 28 तारीख को एक और फिर बिरखा री गतिविधियां माए बढ़वार होवण और उत्तर अगुणी हल्का माए कठे कठे भारी बिरखा होण री आस जताई है। 29 जुलाई 2 अगस्त तई राज्य रा घनकरा ठोड़ा हड़काऊ मजला और कटे कटे भारी बिरखारी आस है। जालोर जिला रा सांचोर माए आज बस और ट्रक री टक्कर माए सवार बस माए सवार दो लोगों री मौत वेगी और 12 यात्री घायल वे गया। घायला ने सांचोर रा ट्रोमा सेंटर माए इलाज सारू भेजी गया है। आ बस सांचोर गुजरात जा रही ही। भारतरी अनाथ सिंह विश्व स्क्वास जूनियर चैंपियनशिप जीत ने इतिहास रच दियो है। कनाडा माए महिला सिंगल्स फाइनल माए मिस्र री रुकैया सालेम ने हरार वना खिताब जीतियो। इस जीत रे साथे अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वास खिलाड़ी बन गई है। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रे तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथे बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों की भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करी जियो। और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा माए 144 नई बसा भेली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। नई साथ ही समाचार नो बुलेटिन अठे पूरो यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
5: अभी श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब सभी श्रोताओं को राजस्थानी धोरों की महक दिलाते हुए आपके साथ प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज की ये सुगंध लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं कुंजीलाल स्वामी और सत्यनारायण शर्मा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत रो कार्यक्रम सुन रहा सगले ग्रामीण भाई ने और किसान भाई ने सत्यनारायण शर्मा और
1: तोला राम रा घना घना मोकला मोकला राम राम
0: राम राम तोला राम भाई। आज रो दिन है विशेष। देखो अपने तो हर दिन कोई तीज त्योहार उत्साह यही करे, पर आज रो दिन सबसे बड़ो उत्साह रो दिन है कि आज रे दिन ही अपने पड़ोसी देश जी को हो बिना धूल चटाई वो एक हिम्मत करी एक कहीं क्या करे भी जवाब जी को है तो

0: तो दियो अपना सूरवीर जी का है और बीमे विजय जी का व्यापाई
1: मैं देखो कोई घात लगार काम करे हां बी काम ने घात लगाउन वाला ने चोखो अच्छो सबक सिखायो
0: बिल्कुल
1: बीरी याद रो आज रो दिन है
0: विजय दिवस
1: बिल्कुल साहब देखो कि तो यहाँ बात करता था कहीं यहाँ पर यहाँ रोंगटा खड़ा हो रहा है
0: बिल्कुल होना ही चाहिए और अपना देश रा सपूत जी का है ये चीज रो कहीं है कि इसको जवाब दियो के बे पाछो कहीं क्या करे आंख उठार देखने रही
1: देखने रही मत कौन करे खास कर आप जी के राजस्थान है आ तो बलिदानियारी धरती है और ई बलिदानियारी धरती पर राजस्थान की धरती पर नुआ नुआ जी का वीर होयोड़ा है पुराना भी अच्छा देखो कोई महाराणा प्रताप ने याद करा राणा सांगा ने याद करा कोई दुर्गादास राठौड़ ने याद करा आज रे थका भी आप कह सका कि घने ही आप जी का है जी का मातृभूमि रे वास्ते है शहीद होयोड़ा है ईसा अनगिनत है
0: बिल्कुल सही बात कही। और एक और आज दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव इकोसिस्टम संरक्षण दिवस जी को हर साल 26 जुलाई ने मनाई जा करे और ये दिवस रो उद्देश्य हुई है जी का मैंग्रोव वन है बिहार महत्व तो बारे में लोगों ने जागरूक करना था के बोला कि मैंग्रोव अपने अठे तो वही कौन सा जिते कहीं है कि समुद्र तट है नदी का मुहाना है या खारे पानी वाला क्षेत्र है बट ए मैंग्रोव वन विशेष रूप में उग्या करें और यहाँ रीति की जड़ा है वे पानी के भीतर और ऊपर दोनों सर रहे जिके सु कहें तेज लेरा और तूफानों सामना कर सके। मैंग्रोव जिका है प्राकृतिक ढालों कार्य करे और तटा ने कटाव चक्रवात और जी की दूसरी प्राकृतिक आपदा है रोकया करे
1: रोकया करे। देखो कितनी अच्छी बात बता दी और अपा जी का धोरा धरती रहने वाला लोग है नी बिहार भी एक दिक्कत हो है और भी दिक्कत सु बचन सारू जगह है नी मैंग्रोव वन जरूरी को नहीं हुआ धोरा रो कटाव ने रोकन सारू भी आप वन लगा सका और वन में आप इसी किस्म रा पेड़ चुन सका जिका आपारी धोरा धरती पर अच्छी तरह पनपे और देखो कम पानी की जरूरत में भी अच्छा मनप सके आपारे धोरारे प्रसार जिको हो रियो है बिया ने रोक सके और बीरे सागे सागे आपारे जिके खेत में कोई नुकसान होने वाली हवावा जिकी आवे नी बिया ने रोकन रो काम भी कर सके जिकी दिशा में आपारे हवा आवे बी दिशा में आप जे अच्छा सघन पेड़ लगा दा। कई बार आपारे मन में आ रहे के साहब नहीं आप धरती जिकी एबा काम को नहीं असी तो अपन ऐसा पेड़ भी लगा सका जिका अपन ने आर्थिक रूप से फायदो दे बे पेड़ भी वन रूप में आप विकसित कर सका।
0: सही बात करी चाहे मैंग्रोव वन हो या अपना जिका साधारण जिका वन है जठे पेड़ पौधा लागोड़ा है बिहार मथे शहरीकरण औद्योगिकरण प्रदूषण अवैध कटाई और जलवायु परिवर्तन रो खतरो जुका दिनो दिन बढ़तो जा रियो है
1: बिल्कुल
0: इन सारू इन जो संरक्षण है वो भगतरी जरूरत है और सरकार जी की बातों काम करी है बिरे सागे सागे आम नागरिक जी का है वे भी आपरे क्षेत्र में वृक्षारोपण कर सके है प्रदूषण नियंत्रण कर सके है और जन जागरूकता रे माध्यम सु कही है के वन संरक्षण मैंग्रोव वन संरक्षण बिया में आपरो योगदान जी को दे सके तो प्रकृति रे जी क्या धरोहर है इरी आपने रक्षा करनी है और आने वाली जी की पीढ़ी है बिहार खातर सुरक्षित वातावरण सुरक्षित पर्यावरण जी को है बीरो निर्माण आपने करनो है। और अब देखो
1: थे एक बात कह दी सदनारायण भाई की भगतरी मांग रहे अनुसार काम करना हाँ। चाहिए तो भगतरी मांग आ है क्या भाई लोगों ने एक कोई चोखो गीतर लो अर्ज करा
0: निजर करो सा
1: सुनो

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: देखो पहलुआ संदेशा सुनिया और संदेशों पहली आप सुन रिया सीमा मिश्रा और साथियों रे गयोड़ो गीत और अबे बात करा आप खेती रे काम सो जुड़ियोड़ो एक और काम जिको भारत रिया परी जी की सरकार है बार आली बद को इतनी अच्छी योजना अपने देश रे लोगों ने दी है भी रे मायने एक साथ कई तरह का काम जुड़ियोड़ा है जिको सरकार अपने स्वच्छ भारत अभियान जिको कार्यक्रम दियो भी कार्यक्रम रे आगे बढ़ाउन शुरू ही गोवर्धन एक योजना जिकी है बा अपारे बयान ने सगला ने एरज कर दी और आ योजना इसी योजना है जिके में गांव रो गुआड रो कचरो गोबर ई तरह रो जिको है ई वेस्ट ने जिके ने बोलिया करे खराब चीजा ये ने काम लेर और एक अच्छी खाद भी बनानो और अच्छो ईंधन के रूप में भी काम में ले लेनो इरो मतलब ओ या करे पूरो तो है देखो सत्यनारायण भाई थाने ध्यान हो तो बताओ देखो
1: गोवर्धन रो मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन और भारत सरकार योजना है ई योजना रो मतलब उद्देश्य वही है कि स्वच्छ भारत मिशन और बीरो कचरा जिको अपने ठे जिको वह है चाहे वो गोबर हो और किसी हो बीरो प्रबंधन ने बढ़ाओ देर और बीरो अच्छो उपयोग करनो और किसानों ने कई प्रकार लाभ योजना से मिले सबसे पहले फायदा है कि खेत री मिट्टी री सेहत में सुधार हुए जैविक खाद जमीन में जिका कार्बनिक तत्व है भी बढ़ावे जिके कारण पानी रोकने की क्षमता बढ़े है और फसल मजबूत हुए दूसरों फायदो है कि रासायनिक खादान माथे निर्भरता जी है वह कम हो जाए जिके सु खेती रो जो खर्चो है वो घटे और मुनाफो जिको
0: बढ़न लाग जाए बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बात है
1: लगाने सारो भी घर में स्वच्छ ईंधन मिले गैस खानो बनाने बना सके और बचोड़ी जी की है वह उत्तम जैविक खाद रे काम में आ जाए
0: बीबीरो जी को कचरो बच जावे है वो अपर काम आ जाए बिल्कुल कितनी अच्छी बात है आमरा आमर गुठलिया रा
1: दाम पर्यावरण संरक्षण में भी आपरो महत्वपूर्ण योगदान जी को दिया करे तो कई तरह रा फायदा जी का है तो ई फायदा रो लाभ अपन ले सका जब ई योजना री जानकारी
0: काम मिले देखो काम कहीं करना है भाई आपने ई पूरो इतो मोटो नाम जी को नहीं गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन वो याद रखने की जरूरत कोनी गोवर्धन योजना है इरो नाम याद रखो सरपंच जी में बात करो आप ग्राम सेवक जी में बात करो प्रधान जी में बात करो कि भाई माने तो ई योजना रो जी को लाभ है भाई गोबर भी है मानखने मानखन दूसरो भी कचरो जी को है वो काम में लेनो है खेत रो जी को वेस्ट है तो भी ने क्यों ले सका मेरी योजना पूरी जानकारी कर आप इरो लाभ ले सको गोवर्धन योजना नाम है वो याद रखो और याद रखने वाली बात कोई और सत्यनारायण भाई
1: कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ाओ
0: बिल्कुल

0: तो सा देखो संदेशों सुने और गीतड़ो भी सुनो और अपने किसान भाई कही है कि भगत रसारू बदलाव जी का है आप खेती बाड़ी में कर रिया है परंपरागत खेती रे सागे में दूसरा जतन भी करे जिके सो बिहारी आमदनी बढ़े और विशेष रूप जो को अपनो क्षेत्र है शुष्क और अर्ध शुष्क है बटे कहीं कहीं काम कर सके तेरे बारे में भगत सारू अपा कहीं है कि विशरा जगह जानी कार है मैंने बुलावा मैंने सके बातचीत करा और किसाना ने सुनावा तो आज इसी बातचीत जी की है डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर जी सागे अपना आकाशवाणी रहा संदीप कुमार जी पारिक जी का है बातचीत करेला और अपने खजूरी खेती के बारे में चौखीसी जानकारी जी के बाद देवेला
1: देवेला लो सुनो सा
2: बीकानेर और आसपास का क्षेत्र जो है वो इन दिनों खजूर की खेती के लिए जाना जाने लगा है और इसकी वजह भी है क्योंकि खजूर की खेती के लिए सभी जो संभावनाएं हैं और प्राकृतिक दशाएं हैं वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन नया खजूर का बाग अगर लगाना हो और खजूर के बाग को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है इन सब बातों के बारे में जिनका एक आम किसान को पता होना चाहिए इन्हीं सब बातों के विषय में बातचीत करने के लिए हमने आज आकाशवाणी में आमंत्रित किया है डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर जी को। आप यंग प्रोफेशनल हैं और खजूर फसल के विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की है आपने और इसके साथ ही आप केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान से संबद्ध हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: डॉक्टर साहब अपने यहाँ जो भी किसान भाई अगर नया खजूर का बाग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली समस्या उनके सामने आती है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उनको चयन करना चाहिए, तो इस विषय पर आप थोड़ा उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दीजिए।
3: मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भारत में खजूर की कई उन्नत व्यवसायिक किस्में उपलब्ध है। इनमें बरही, मेडजूल, हलावी, खुनेजी, जाहिदी, खल्लास, खदरावी तथा सामरन प्रमुख है। यदि किसान ताजे फल के लिए खेती करना चाहते हैं तो बरही, खुनेजी, हलावी सबसे उपयुक्त किस्में हैं। बरही अपने कुरकुरे, मीठे सुनहरे फलों के कारण किसानों और उपभोक्ताओं दोनों में बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अलावा खुनेजी एक लाल रंग की आकर्षक किस्म है। इसके फल अत्यधिक मीठे, स्वादिष्ट तथा आकर्षक फल रंग के होते हैं। इसकी उत्कृष्टता, गुणवत्ता एवं आकर्षक रंग के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है और किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त होता है। यदि किसान उच्च मूल्य वाले बाजार को लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो मेडजूल अपने लोकप्रिय और प्रीमियम किस्म मानी जाती है। इसके फल आकार में बड़े, गुदेदार, अत्यंत मीठे तथा आकर्षक होते हैं। ये किस्म उच्च गुणवत्ता वाले छुआरे तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। यदि कारण है कि देश एवं विदेश दोनों ही बाजारों में इसकी मांग अधिक रहती है और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जाहिदी, खदरावी, खलास तथा सामरन जैसी किस्में भी प्रसंस्करण, पिंड खजूर, सिर्फ तथा अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए उपयुक्त है।
2: तो कुल मिलाकर आपने जिन किस्मों के बारे में बताया है निसंदेह वे बहुत ही अच्छी और उन्नत किस्में हैं। लेकिन अब अगला कदम जो किसान को दिखाई देने लगता है वो होता है कि वो अच्छी किस्म के पौधे जो हैं वो कहाँ से खरीदें और कौन सी प्रवर्धन विधि जो है वो सबसे अच्छी होती है, इस विषय पर आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
3: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, क्योंकि अच्छे पौधे ही अच्छी बागवानी नहीं होते हैं। यदि शुरुआत में पौध सामग्री अच्छी होगी तो भविष्य में उत्पादन और फल की गुणवत्ता भी बेहतर मिलेगी। मैं किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा कि कभी भी बिना पहचान वाले स्रोत या सड़क किनारे की नर्सरी में पौधे नहीं खरीदे। हमेशा प्रमाणित सरकारी संस्थान या विश्वसनीय टिश्यू कल्चर नर्सरी से पौधे खरीदे। सरकारी संस्थानों में ICR केंद्र, शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, खजूर अनुसंधान केंद्र भोज का जैसलमेर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर तथा ICR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर जैसे संस्थानों के समय समय पर पौधे और सामग्री तकनीक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। आजकल खजूर के पौधे मुख्यतः ऑफशूट और टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए जाते हैं। ऑफशूट से तैयार पौधे मात्र पौधे के समान गुणों वाले होते हैं, अपेक्षाकृत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक पौधे से सीमित संख्या में ही ऑफशूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं टिश्यू कल्चर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से कम समय में बड़ी संख्या में रोगमुक्त समान

0: गुणवत्ता वाले उच्च उत्पादकता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। आज मेडजूल, बरही, हलावी, खुनेजी जैसी व्यवसायिक किस्मों के टिश्यू कल्चर पौधे किसानों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अंत में मैं किसान भाइयों बहनों से यही कहना चाहूंगा कि पौधे खरीदते समय थोड़ी सावधानी भविष्य में कई वर्षों तक अच्छा उत्पादन और बेहतर आय सुनिश्चित करती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित एवं रोगमुक्त टिश्यू कल्चर या स्वस्थ ऑफशूट पौधे ही प्राथमिकता दें।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रोग मुक्त टिश्यू कल्चर या स्वस्थ ऑफशूट पौधों को ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, एक चीज हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब हमने फसल का चयन कर लिया और कहां से हमने जो पौध है वो ली है वो भी हमने फाइनल कर ली, अब सवाल आता है कि क्योंकि ये जो खजूर की फसल है अपने यहाँ पहले नहीं होती थी और अब होने लगी है, तो खजूर में खाद और सिंचाई की अगर हम बात करें तो इसका क्या महत्व है?
0: खजूर की अच्छी वृद्धि, अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए संतुलित पोषण एवं उचित सिंचाई प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले जैविक खाद की बात करें तो प्रत्येक वर्ष प्रति पौधा 25 से 50 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य दे। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं तथा पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। इसी के साथ मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरकों में पूर्ण विकसित फलदार पौधों के लिए लगभग 650 ग्राम नत्रजन, 650 ग्राम फॉस्फोरस, 850 से 900 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रतिवर्ष देना लाभदायक होता है। फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा सर्दियों में गोबर की खाद के साथ दे, जबकि शेष आधी नत्रजन की मात्रा फल विकास के समय दे। इसके अलावा शुष्क में पोषक तत्वों की कमी होने पर बोरोन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ और मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम प्रति लीटर तथा फेरस सल्फेट का भी 5 ग्राम प्रति लीटर का पर्णीय छिड़काव करने से फल का आकार, रंग, गुणवत्ता तथा उपज में सुधार होता है। इसी के साथ अगर सिंचाई की बात करें तो खजूर में ड्रिप सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इससे 30-50% तक पानी की बचत होती है, आवश्यक नमी लगातार मिलती रहती है और उर्वरकों का भी अधिक दक्षता से उपयोग किया जा सकता है। गर्मियों में मौसम एवं मिट्टी के अनुसार 7-10 दिन तथा सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना सामान्यतः पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों और बहनों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में कभी भी जलभराव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक पानी जमा रहने से जड़ें सड़ सकती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं तथा रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुख्य रासायनिक उर्वरक के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो भी आवश्यक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने खजूर की फसल में ये भी सुना है कि इसके लिए परागण जो है वो जरूरी होता है, तो ये क्यों आवश्यक होता है, इस विषय पर थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए।
0: जी सर, खजूर की एक विशेषता ये है कि सर इसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधों में आते हैं। यदि समय पर परागण नहीं किया जाए तो फल कम लगेंगे और उनका आकार भी छोटा रहेगा। इसलिए व्यवसायिक खेती में हस्त परागण करना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ नर पौधा लगभग 40-50 मादा पौधों के लिए पर्याप्त होता है सर। आजकल तरल परागण, यांत्रिक परागण, ड्रोन आधारित परागण जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे कम समय में अधिक क्षेत्र में परागण किया जा सके।
1: एक डॉक्टर साहब, खजूर की खेती में एक ये भी सुना जाता है कि खजूर में गुच्छा आवरण जो है वो जरूरी होता है, तो ये जो गुच्छा आवरण है खजूर की फसल में ये क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं?
0: मैं अपने किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि खजूर में गुच्छा आवरण एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तकनीक है। ये प्रक्रिया किमरी अवस्था के अंतिम चरण तथा बीसरी अवस्था के प्रारंभिक में की जाती है, जब फल तेजी से विकसित होने लगते हैं और उनका आकार मटर के दाने के समान होता है। इस समय फलों के गुच्छों का क्राफ्ट पेपर बैग या सफ़ेद सूती कपड़े के बैग से ढक दिया जाता है, जिसे गुच्छा आवरण कहा जाता है। गुच्छा आवरण करने से फल वर्षा, धूल, तेज धूप, पक्षियों, कीटों और रोगों से सुरक्षित रहते हैं। इसके कारण फलों का रंग, आकार, वजन, मिठास, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जैसे TSS तथा समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही फलों में दरार पड़ने और सड़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। किसान भाइयों और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि साधारण पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नमी और तापमान बढ़ जाता है, जिससे फलों में फफूंद एवं सड़न का खतरा बढ़ जा सकता है। यदि किसी कारण पॉलीथीन का उपयोग करना पड़े तो केवल छिद्र युक्त पॉलीथीन बैग का ही सीमित उपयोग करें, ताकि हवा का आवागमन बना रहे। कई वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह पाया गया कि क्राफ्ट पेपर या सफेद कपड़े के बैग से गुच्छा आवरण करने पर फलों का बाजार गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। ऐसे फल अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं, उनका भंडारण बेहतर रहता है, किसानों को बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें तो हमने सारी कर ली कि किस्म कौन सी लेनी चाहिए और किस तरह से गुच्छा आवरण जो है वो किसान के लिए लाभदायक है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी फसल जो होती है उसमें कीड़े मकोड़े या

0: बीमारियों का प्रकोप जो है वो अक्सर हो ही जाता है। तो खजूर में भी कोई ना कोई कीट या रोग आते होंगे, अगर आते हैं तो उनका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए?
1: जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। खजूर की अच्छी उपज और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कीट और रोगों का समय पर प्रबंध बहुत आवश्यक है। मैं अपने किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि प्रमुख कीटों की बात करें तो इनमें लाल तना छेदक, जिसको रेड पाम विविल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा सफेद स्केल कीट, फल छेदक कीट, गेंडाबर्ग, राइसोनस बीटल तथा माइट्स प्रमुख कीट है। इसमें स्पष्ट है लाल तना छेदक सबसे अधिक हानिकारक कीट है। इसकी सुंडी तने के अंदर सुरंग बनाकर पौधे को अंदर से खोखला कर देती है, जिससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर सूख सकता है। इसके नियंत्रण के लिए बाग में फेरोमोन ट्रैप लगभग 5 से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाना चाहिए। संक्रमित भागों को नियमित निगरानी करें तथा आवश्यकता होने पर इमिडाक्लोप्राइड 0.3 मिली प्रति लीटर पानी तथा थाइमेथोक्स 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें। इसके अलावा सफेद स्केल कीट है, जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि नीम का तेल का 5 मिली प्रति लीटर या डाइमेथेट का 2 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा जो इनसे कीड़ा लगता है वो है लेजर डेथ मॉथ, फल में छेद कर गुदे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फल समय से गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए गिरे हुए फलों को नष्ट करें तथा आवश्यकता होने पर स्पेनोसाइड 0.3 मिली प्रति लीटर पानी के छिड़काव करें। इसके अलावा वो है गेंडा बर्ग, नई पत्तियों और शीर्ष भाग को नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए पौधों को नियमित सफाई रखें, आवश्यकता अनुसार कार्बाइल 4 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्रमुख रोगों की बात करें तो अल्टरनेरिया पत्ती दबा रोग, फुजियरम विल्ट तथा फल सड़न रोग अधिक देखे जाते हैं। अल्टरनेरिया रोग में पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे दिखाई देते हैं, जबकि फुजियरम विल्ट में पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है, और फल सड़न रोग में विशेषकर वर्षा या अधिक नमी की स्थिति में सड़ने लगता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए बाग की साफ सफाई बनाए रखें, संक्रमित पत्तियां एवं फलों को हटाकर नष्ट करें तथा खेत में जलभराव न होने दें।
0: तो ये तो बात हमने की खजूर में लगने वाले कीड़े मकोड़े और रोगों के विषय में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है कि जैसे किसान जब खजूर का बाग लगाएगा तो उसको जो पिंड खजूर है, जो खजूर है फल के रूप में, वो तो मिलेगा ही, लेकिन क्या इसके अलावा अन्य उत्पाद जो है वो भी खजूर से बनाए जा सकते हैं?
1: जी सर, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों से बताना चाहूंगा कि आजकल केवल ताजा खजूर बेचने तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर उसी के अलावा अपन छुआरा, पिंड खजूर, सिरप, जैम, जेली, कैंडी, पाउडर, चटनी, बेकर उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के लिए तैयार किया जा सकता है। इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है तथा मूल्य संवर्धन से किसानों को अधिक लाभ मिलता है और उत्पाद अधिक समय तक सुरक्षित भी रहता है। इसमें छुआरा बनाने के लिए अपने प्रोसेस होती है, कच्चे फलों को तोड़कर उसको 40 से 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबालकर और उनको सुखाया जाता है, उससे छुआरा बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पिंड खजूर बनाना है तो पिंड खजूर के लिए उसको उसकी पिंड स्टेज होती है खजूर की, उस स्टेज पर हार्वेस्ट करके और उसको सुखाया दिया जाता है।
0: ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए लाभदायक विकल्प के रूप में खजूर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान से संबद्ध डॉक्टर जितेंद्र गुजर जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे और किसान भाइयों और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो भाई, कितनी अच्छी जानकारी दी है कि खजूरी खेती किया करनी है। डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर जी ने देवा बहुत बहुत धन्यवाद, और सागे देवा धन्यवाद संदीप जी ने भी कि इतनी अच्छी जानकारी अपन दे रही। और अबे देखो, एक संदेश सुनो, फिर आगे बात करा।
3: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो देखो, संदेशा सुनिए और संदेशा रात अर्थ भी होया करे। एक संदेश ओ है भाई लोगा के आप जितनी भी खेती करिया करा बीरे सागे सागे जे औषधीय पौधारी खेती करा तो देखो बढ़ाउन सारू तो बड़ो लाभ मिल जावे। और साथे साथे आप जितनी भी फसल लेवानी जी की फूल वाली फसल होवे तो बिया रे साथे यदि मधुमक्खी पालन करला तो बड़ो अपने लाभ मिल जाया करे।
3: और अब देखो मधुमक्खियों का बहुत योगदान
2: देवे। और बात आ है भाई के अबे जी की यानी आप घड़ी है नी बाबी आके दिया करे अपन है कि भाई देखो भाई लोगों बात जीत की है नी बा राम रामी जीती करनी है और अच्छी जानकारी मिल गई। आज देखो कितनी खजूर रीर फसलारी और अच्छो दिन हो कारगिल लो। और अब जी को भगत है वो कह रही है कि भाई लोगों ले ला सीख गणान गणा मोकला मोकला राम राम, राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सांध्यकालीन समय वैसे कहते हैं कि दो अलग अलग प्रहरों का मिलाप होता है, और ऐसे प्रहर में जब भक्ति के अंदर डूबा जाए तो आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है, आपको चैन मिलता है, धैर्य मिलता है, और इस जगत से लड़ने की आपको ताकत मिलती है। तो आइए इस संध्या को और अधिक सुमधुर और अधिक सशक्त बनाएं इन कुछ मंत्रों के साथ।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

को एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ।

आई रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर एक चेतावनी, एक शिक्षा भक्त कबीर ने दी है।

एरन राय चौधरी के गाए इस सुगम संगीत के बाद सुनते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गीत।

सुधा मल्होत्रा के द्वारा गाए इस सुगम संगीत के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कहां पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: Sarigama, 1, 2, 3, 4. Sarigama, ma sarigama, sarima, magaresa. Sarigama, ma sarigama, sarima, magaresa. Magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa.
1: Hello, hello, good morning, या good evening. दोस्तों, मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और रंगीन बनाने की कोशिश करने वाला हूं, और आप को मैं अपने दोस्तों के रूप में आज डील करने वाला हूं, क्योंकि दोस्ती से जुड़ा हुआ आज का एक कार्यक्रम. मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है वो आज तक मैंने शायद मेरे ख्याल से आपको नहीं देखा होगा और आपने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन इस आवाज़ के कारण हम लोग एक दूसरे से बहुत पक्के दोस्त हैं. हम लोग आपकी आपस की बातें एक दूसरे से उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग पास में बैठे हुए बात करते हैं. ये दोस्ती होती है ना, ये किसी प्रकार का कोई कहते हैं ना कि शारीरिक सौष्ठव नहीं मांगती है, ये मन का मिलना मांगती है. अगर मान लीजिए आपका और मेरा विचार मिलता है, आपकी और मेरी बातें मिलती हैं, आपका और मेरा सोचना मिलता है, तो हम दो अच्छे दोस्त हो सकते हैं. और ये बात मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं. दोस्ती से बढ़ते बढ़ते हम लोग एक दूसरे पर, इस पूरे संसार के अंदर अगर मैं सबको अपना दोस्त मानने लगूं तो ये संसार मेरे लिए कितना हसीन हो जाए, क्योंकि ये वही समय होता है जो हम लोग दोस्तों के साथ गुजारते हैं ना. वो आप खुद महसूस करके देखिएगा, वो समय आपके लिए कितना कितना अच्छा होता है. आप उसमें आनंद के गोते लगा रहे होते हैं. ये दोस्ती है ना, आसानी से नहीं होती, क्योंकि ये वो मात्र एक रिश्ता है जो आप लोग ऊपर से चुनके नहीं आते, ये यहीं पर बनता है. और ये दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो शुरुआत हो जाए तो उसके बाद ख़त्म होने का नाम नहीं लेता. हालांकि कई बार हमारी मनमुटाव हो सकती है, लेकिन वो मनमुटाव तक होती है, यानी फिर भी हम उनके पक्के दोस्त होते ही होते हैं. आपका क्या कहना है इस बारे में? दोस्त क्या लंबे समय तक रहने

वाले होते हैं, या फिर आजकल के ज़माने जैसे जैसे आपके पास में मोबाइल होता है तो आपको कोई रील पसंद नहीं आई तो आप उसको स्वाइप करके दोस्ती भी क्या इस प्रकार से तोड़ सकते हो? नहीं लगता, शायद आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वही दोस्त है जैसी आज आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बना रखी है। मोबाइल फ़ोन को आप कितनी देर तक अपने आप से अलग रख सकते हैं? दोस्त को भी उसी प्रकार समझिए, क्योंकि ये वही दोस्त तो है जो आपके हर बुरे अच्छे समय में आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हो सकता, ये दोस्त वो होता है जिसके कंधे पर आप सर रखकर थोड़ा सा रो सकते हैं, अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं, उसके साथ गुदगुदा सकते हैं, उसको कभी कभी छोटी सी टफली भी मार सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप लोग एक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ नहीं कर सकते। आज की दुनिया में सभी लोगों के पास में ये जो गैजेट आया है ना, ये जो डिवाइस आई है, इस डिवाइस से सारी दोस्ती, सारे रिश्ते, सारे संबंध टूटते से गए हैं। लेकिन ये आपका परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता, ये आपका सहायक हो सकता है। इट इज़ ए टूल जो डिज़ाइन किया गया है आपकी सुविधा के लिए। दोस्त सुविधा के लिए होते हैं क्या? दोस्त आपके जीवन का वो हिस्सा होते हैं जिसमें आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। ये वो हिस्सा होते हैं जहाँ पर आप सबसे अधिक अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और उनके होते ही आपके अंदर वो शक्ति, वो पराक्रम आ जाता है कि आप हर किसी चीज़ से बढ़ जाते हैं। और हम लोग जब भी साथ होते हैं तो मिलकर बस यही गाना गुनगुनाते हैं,

सच कहूं दोस्तों, रिश्तेदार हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्त वो फरिश्ते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी के खूबसूरत सफर में खुद पूरी दुनिया में तलाशते हैं। और अरबों की संख्या वाली इस दुनिया के अंदर वो एक प्यारा सा यार, वो मेरा प्यारा सा दोस्त जो मेरे लिए सब कुछ होता है। वो बचपन के दोस्त याद है आपको, जब एक रुपए की टॉफी भी आधी आधी बांट कर खाई जाती थी, और स्कूल के वो दिन जब लास्ट बेंच पर आपको याद कराता हूँ, लास्ट पर बेंच पर बैठ करके टिफिन हम लोग चोरी चोरी खाया करते थे। अरे मेरी तो हालत बहुत खराब थी यही कि मेरे दोस्त लोगों को मेरे घर का बनाया हुआ मान लीजिए खाना बहुत पसंद था, तो मुझे पता ही नहीं होता था मेरा टिफिन कब कब मैं आधा से ज़्यादा खाली हो जाता था और मेरे साथी वाले जो है फिर अपना टिफिन जो है मुझे जब देते थे बड़े प्यार से, तो मुझे लगता था यार कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, अपना टिफिन मुझको दे रहे हैं। लेकिन फिर जब बाद में पता चलता था कि अरे ये तो मेरा खुद का टिफिन तो खा लिए, तो वो कहाँ गया, वो दोस्तों के पेट में गया। जी हाँ, तो लास्ट बेंच पर बैठ करके टिफिन चोरी करना एक बड़ा एडवेंचर हुआ करता था क्या। वैसे दोस्तों दोस्ती भी अलग अलग फ्लेवर की होती है ना। एक दोस्त वो होता है जो हमेशा हमें ज्ञान देता रहता है, जैसे आपको शायद हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ, हमारा पर्सनल एडवाइजर होता है वो। दूसरा वो जिसे आप रात के 2 बजे भी फोन करके बोलोगे ना कि भाई भाई लफड़ा हो गया है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है, वो तू बस इतना कहेगा तू लोकेशन भेज मैं अभी आ रहा हूं। और एक ऐसा दोस्त भी होता है जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी बेइज्जती करने में निकल जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा आपसे कुछ कह दे तो वो सबसे पहले आपके लिए ही खड़ा होता है। तो ऐसे दोस्तों से रूठना मनाना चलता ही रहता है, लेकिन दोस्ती हमेशा जारी रहती है।

यार याद आ रही है, चाय पर कब मिल सकता है? यकीन मानिए उसकी एक हंसी आपका पूरा दिन बना देगी। दोस्ती कुछ ऐसी ही हुआ करती है।

शर्त यह कह सकता हूं कि आपके आज फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में सैकड़ों नाम भरे पड़े होंगे, सोशल नेटवर्किंग में भी आपसे बहुत सारे लोग भाग जुड़े हुए होंगे, लेकिन दिल का हाल बताने के लिए कभी कभी कोई एक दोस्त आपके बिल्कुल करीब नहीं होता। अगर आज आप मेरी आवाज़ सुनते सुनते किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद कर पाते हो जो आपके लिए हमेशा बिल्कुल पास खड़ा होता है, तो किसी पुराने दोस्त की अगर आपको शक्ल याद आ रही है, ये नाम याद आ रहा है, तो इंतज़ार मत करना, ये शो खत्म होते ही उस यार को एक कॉल जरूर मिलाइएगा। वो दूर हो सकता है, पास हो सकता है, या फिर उसको अगर नहीं कॉल उठा पाता तो उसे एक मैसेज जरूर छोड़ दे।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: फिल संगीत में आपके दोस्तों को याद करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो बिना कुछ कहे दिल की बात समझ जाए, और जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तो कहे चल यार मैं हूँ ना तेरे साथ। अब इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, चाहते चाहते बस यही कहूँगा कि दिए तो आंधी में भी जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में भी खिला करते हैं। दिए तो आंधी में भी जला करते हैं और गुलाब तो कांटों में भी खिला करते हैं। खुश नसीब होती है वो ज़िंदगी जिसमें आपके जैसे दोस्त मिला करते हैं। बस इसी शायरी के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न करना चाहूँगा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ पर, और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण, रात्रि के 8:30:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे उमेश मेहंदी रत्ता के द्वारा गाए कुछ लोक गीत। तो सबसे पहला गीत हम शुरुआत करने वाले हैं, इसके बोल हैं मारो ढोलो घर आवे।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: परेशानी, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।

0: और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन

0: किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल

0: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution,

तो लीजिए प्रारंभ करते हैं हमारा और आपका सबका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज जिस बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं, ये एक ऐसे अभिनेता के बारे में है जिसको आप और हम सब बेहद पसंद करते हैं। आप सभी का इस शांत रात्रि में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। 12 नवंबर 1944 को मुंबई में एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ। 12 नवंबर 1940 एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ जिसने पर्दे पर आकर खलनायकी के सारे पैमाने बदल डाले। आज हम किसी नायक की बात नहीं करने वाले, नायक जो असल जिंदगी में बिल्कुल नायक हैं, लेकिन फिल्म रील में जिसे आपने हमेशा देखा है एक खलनायक के रूप में। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता अमजद खान साहब को, क्योंकि कल 27 तारीख को हम उनसे रुखसत कर लिए थे। जब भी अमजद खान साहब का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले गूंजती है चंबल के बीड़ों की वो खौफनाक आवाज। कितने आदमी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गब्बर बनने का यह सफर इतना आसान नहीं था। शोले की शूटिंग के दौरान शुरुआती दिनों में लगा कि उनकी आवाज में वो इतना कड़कपन, वो दाब नहीं है, और उन्हें बदलने की बातें होने लगी। पर अमजद साहब ने चंबल के डाकुओं पर गहन शोध किया, अध्ययन किया, किताबें पढ़ी, और जब पर्दे पर आए तो इतिहास रच डाला। अमजद साहब को चाय का बेइंतहा शौक था। कहा जाता है कि वे एक दिन में 30 से 40 कप चाय पिया जाया करते थे। एक बार शूटिंग के दौरान सेट पर दूध खत्म हो गया, अमजद साहब ने काम रोक दिया, काम रोक कर बैठ गए साहब। अगले दिन वे खुद सेट पर 2 बकरियां बांध के लाए ताकि चाय में कभी रुकावट ना आए। आप भी क्या इसी प्रकार से चाय के शौकीन हैं क्या? आइए चाय की चुस्कियां लेते हैं और अमजद खान साहब की उस ऐतिहासिक फिल्म शोले का ये सदाबहार नगमा आपकी

आयाना आनंद, देखिए आज हमने सारे सारे वो गीत संकलित किए हैं आपके लिए जिसमें कहीं ना कहीं स्क्रीन पर आपको इन गानों के बीच में अमजद खान साहब जरूर दिखेंगे। इस गाने के अंदर भी आपको बिल्कुल याद ताजा हो गई होगी शोले की। लेकिन अमजद खान साहब सिर्फ खौफनाक विलन के रूप में ही नहीं, इन्होंने साबित किया था कि वे एक बहुमुखी कलाकार हैं। 1980 में उनकी सुपरहिट फिल्म कुर्बानी आई थी, जब वे मूछों पर ताव देते हुए ड्रम बजाते हुए बड़े बेफिक्री से पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में सामने आते हैं तो पूरा सिनेमाघर तालियों से गूंज उठा था। आपके लिए खास चुनके लाए हैं हम लोग वही गीत, तो आनंद उठाते हैं उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे।

तो ऐसे थे अमजद खान साहब, चाय के अटूट शौक, तो साथ में चाय पीने वालों के साथ में भी दोस्ती बेहतरीन थी उनकी। देखिए ना कि वक्त जो है हमारा साथ देते देते यहां तक आया कि अमजद खान साहब की जिंदगी किताबें बहुत सारी अभी तक बाकी, कई सारे ऐसे पन्ने हैं जिसको हमें पलटना है, रात को हम लोग इसी के साथ पलटेंगे। हम उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में भी बातचीत करेंगे, जैसे उनके महान निर्देशक सत्यजीत रे और अमिताभ बच्चन के साथ किस प्रकार की दोस्ती थी, अटूट दोस्ती थी। बात करेंगे और सुनेंगे ढेर सारे हसीन नगमे। तो आपको बतला दें 27 जुलाई 1992 को अमजद खान साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए महज 51 वर्ष की उम्र में, लेकिन अपनी अदाकारी और अपनी इंसानियत के जरिए वो हमेशा

हमारे मन पे राज करते हैं। अमजद खान साहब के जीवन का एक बेहद ही खूबसूरत किस्सा है कि महान निर्देशक सत्यजीत रे साहब जब वे अपनी इकलौती हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बना रहे थे तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अमजद खान साहब थे। सत्यजीत रे साहब की पत्नी बिजोया रे ने अपनी किताब में लिखा था कि अमजद खान साहब इतने शालीन और ज्ञानी थे कि उनको कई सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। उनके साथ वक्त बिताने पर पता ही नहीं चलता था कितना जल्दी वक्त बीत जाता है। उनकी शालीनता, उनकी बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि लोग बाग उनसे उन पे फिदा हुए बगैर नहीं रहते थे। लेकिन वहीं जो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका था फिल्मों के अंदर, वो उन्हें उतना ही खौफनाक और उतना ही, अगर कुछ फिल्मों की बात करें तो उनको कॉमिक सेंस भी उनका बहुत बढ़िया था। कॉमेडी भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म की। फिलहाल समय है एक और गीत का, जहां पर अमजद खान साहब आपको फिर से इस गीत में दिखाई देंगे।

अमजद खान साहब ने 220 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, पर आमतौर पर अमिताभ बच्चन के साथ उनके किए गए शोले फिल्म के गब्बर सिंह को बहुत याद रखा जाता है। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने सकारात्मक और यहां तक कि हास्य भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उनके फिल्म फेयर पुरस्कारों के नामांकन को अगर मैं देखूं तो अमजद खान साहब को अपने कैरियर के चरम पर 1976 से 1986 तक 7 बार नामांकित किया गया था, 5 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में, और वो एक ही बार में, एक ही वर्ष में दो दो नामांकन के साथ भी उपस्थित हुए थे, और 2 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए, दोनों एक ही वर्ष में, और उन्होंने पहली श्रेणी में 2 बार और दूसरी श्रेणी में 1 बार पुरस्कार भी जीता। पहली श्रेणी में 1976 में आई फिल्म शोले को छोड़कर, जिसमें वे दीवार के लिए शशि कपूर से हार गए थे, उनकी बाकी सभी भूमिकाएं खलनायक से बिल्कुल ही अलग थी। जैसे कुर्बानी में मजाकिया इंस्पेक्टर के रूप में ढोल बजाने वाला, याराना में नायक का धनी और सहायक मित्र के रूप में, किशोर प्रेम कहानी लव स्टोरी में एक मिलनसार पुलिस कांस्टेबल के रूप में, आपने देखा होगा ना दादा फिल्म में भी 1980 में, जहां पर एक वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं उनके लिए एक तरह का उद्धार का पैटर्न दिखाई देता है, जहां पर वो सुधारवादी बने हैं। ये सिर्फ अपवाद नहीं थे, ऐसे कई सारे उदाहरण भी हैं जहां अमजद खान का, जिनका जन्म 12 नवंबर 1940 को इसी दिन हुआ था, कि पर्दे पर निभाए गए किरदार के लिए दर्शकों ने कई बार तालियां बजाई। जैसे उनकी एंट्री होती थी तो बहुत तालियां बजाई, आलोचना की, नफरत की, लेकिन उनको हर बार स्क्रीन पे प्रेज किया गया। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में तत्कालीन बॉम्बे में रंगमंच से शुरुआत की थी, लेकिन मधुबाला नासिर खान और उनके पिता अभिनीत विलक्षण, उनके पिता का नाम है जयंत, जिन्हें सभी के सभी लोग बाग जयंत एक्टर के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो इनकी रोमांटिक फैंटेसी नाजनीन फिल्म 1951 में आई थी, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी एक बाल कलाकार के रूप में, एक छोटी सी भूमिका थी जिसका श्रेय उन्हें नहीं दिया गया था। इसके बाद में वे किशोर कुमार के क्राइम थ्रिलर 4 पैसे, जो 1955 में बनी थी, राज कपूर के द्वारा निर्मित अब दिल्ली दूर नहीं 1957 में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने फिर से छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनकी पहली बड़े होने पर जो फिल्म आई थी देव आनंद अभिनीत सामाजिक नाटक माया थी, एक गली के अपराधी के रूप में एक छोटी सी भूमिका थी अमजद खान की। इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी चालू रखी। आपको अब याद दिलाता हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके अंदर वो अच्छे दोस्त के रूप में बने हैं, एक धनी लेकिन अच्छे दोस्त के रूप में, जो बच्चों से बहुत प्यार करता है, और उसका ये गाना जो है वो सभी बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है।

बड़ी अजीब सी बात है सर कि अमजद खान साहब को ये शोले फिल्म किस तरह से मिली, संयोगवश उनका चयन अभिनय और फिल्म को मिली प्रतिक्रिया आपको ही बतलाता हूं। इस किरदार को लिखते समय जावेद अख्तर को करीब एक दशक पहले एक नाटक में देखा गया, एक युवक याद आया और उन्हें लगा कि ये इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। उन्होंने अपनी पटकथा लेखन सहयोगी सलीम खान को ये बात बतलाई तो अमजद खान के पिता को वो जानते थे और उन्होंने भी सहमति दे दी कि ठीक है भाई अमजद खान साहब काम कर लेंगे। दरअसल एक दिन सलीम खान की मुलाकात अमजद खान से हुई और वे उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी से मिलवाने के लिए गए। कहानी के अनुसार सिप्पी साहब एक कमरे में आराम कर रहे थे जब अमजद खान अंदर आए और उन्हें बस परछाई के रूप में देख करके ही सिप्पी साहब को यकीन हो गया था कि उनको अपनी इस फिल्म का गब्बर मिल गया। वैसे तो पहली पसंद उनकी डैनी डोंगचप्पा थी लेकिन समय की कमी के कारण उन्होंने उन्हें

कर दिया था क्योंकि उस वक्त में वो धर्मात्मा फिल्म के लिए बिजी थे। जबकि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार दोनों ने ही पटकथा पढ़ने के बाद ही भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी कि वो गब्बर बनना चाहते हैं, लेकिन फिर ये काम मिला हमारे अपने चहेते अमजद खान साहब को। हालांकि अमजद खान साहब को कभी भी ये मंजूर नहीं था कि उनको कोई खलनायक के रूप में पहचाने, लेकिन उनकी अदाकारी ने उस रोल को इतना न्याय दिया कि आज भी अगर कोई विलन है, लगता कि भी शोले फिल्म में कोई विलन हो सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अमजद खान साहब ही हो सकते थे। शूटिंग के दौरान सलीम जावेद को किस तरह से लगा कि उनकी आवाज बड़ी कमजोर है, वह आवश्यक रूप से खौफ जो होना चाहिए डाकुओं के द्वारा वो नहीं पैदा कर पा रहे, और उससे इसे बदलने की कोशिश भी की गई लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अमजद खान साहब ने इस भूमिका के लिए पूरी तैयारी की, जिसमें पत्रकार तरुण कुमार भादुरी की एक चंबल घाटी के कुख्यात डाकुओं पर लिखी गई किताब थी। उस दिलचस्प किताब का उन्होंने पूरा अध्ययन किया, उसमें हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको निकाला और उसे इस बात का पता चला कि वे बेहद अच्छे ढंग से उस किरदार को निभा पाए। बाद में पता चला कि वे बेहद क्रोधित हुए कि फिर भी उनके इसके अलावा रिलीज के समय शोले को शुरुआत में मिली ठंडी प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि शुरुआत में शोले फिल्म जो है वो इतनी अधिक चली नहीं थी, यहां तक कि गब्बर सिंह की निर्मम खलनायकी की ज्यादा भावनाएं जगाने में वो ये किताब कामयाब रही। और जैसे जैसे लोगों के बीच इसकी चर्चा बढ़ती गई, फिल्म धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर बनती गई, गब्बर सिंह एक आइकन बन गए, उनके संवाद मशहूर हो गए जैसे तेरा क्या होगा कालिया। उत्तर भारतीय सभी लोगों को ये बड़ा पसंद डायलॉग होता है। अमजद खान बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन 1976 में गोवा मुंबई राजमार्ग में एक सड़क दुर्घटना घटी और उसमें उनकी और उनकी पत्नी की गंभीर चोटों के कारण उनका कैरियर और जीवन लगभग समय से पहले ही समाप्ति तक पहुंच गया। उनकी सारी पसलियां टूट चुकी थी और उसके बाद उनकी स्वास्थ्य की रिकवरी बहुत धीरे धीरे हुई। लगातार उनका बढ़ता हुआ मोटापा उनके लिए समस्या बनी रही और यह अमिताभ बच्चन ही थे जिन्होंने उनकी उस आपातकालीन सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे और उनका सहयोग किया था। तो आइए उनकी ही एक फिल्म का गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है कालिया।

अमिताभ बच्चन से दोस्ती के बारे में तो आप लोग उनके जान ही गए हैं। अमिताभ बच्चन का उनका साथ काफी पुराना था। अमजद साहब ने कॉमेडी में भी जितनी अच्छी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उन्हें आप देख सकते हैं कि चमेली की शादी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लावारिस, फिर सत्ते पे सत्ता पे उनका अंदाज, उन्होंने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। 1986 के बीच उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अमजद खान साहब ने फिल्म दादा में एक ऐसे अपराधी का किरदार निभाया था जो अंदर से बेहद संवेदनशील था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। रंगमंच के बड़े अजीम प्रेमी थे और कॉलेज के जमाने में से ही नाटकों में काफी सक्रिय रहा करते थे। उनके पिता जयंत साहब भी अपने दौर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जाने माने अभिनेता थे, इसलिए अभिनय उन्हें विरासत में मिला जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से नए आयाम दिए। एक समय ऐसा भी आया था कि अमिताभ बच्चन के साथ में जब वो दो फिल्में कर रहे थे तो एक फिल्म में वो उनके साथी मिल बने थे परम मित्र याराना में, और वहीं पर दूसरी फिल्म में उनके पिता बने थे जिस लावारिस हो गया। तो आइए सुनते हैं स्वाग फिल्म से गीत।

0: खुदा हूँ, वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और अब समय आ गया है जब आज के इस सुहाने सफर को यहीं पर थामने का। अमजद खान साहब भले ही आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी भारतीय सिनेमा में स्वर्णिम इतिहास का जिक्र किया जाएगा तो उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में चमकता हुआ दिखाई देगा। वे हर मौसम में हर जज्बात के बेमिसाल कलाकार थे। आज की फिल्म संगीत की सभा बस यहीं तक। आपसे फिर मिलेंगे किसी और किरदार के साथ, कुछ उनके बारे में कुछ उनकी बातें करते हुए आपको सुनवाएंगे हम खूब सारे प्यारे से गीत। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए प्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इसमें आज की कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल, इनसे आप बजाया हुआ संतूर वादन सुनेंगे। तो लीजिए।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ संतूर रिसाइटल बाय इंडियाज फर्स्ट फीमेल संतूर मास्टर विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, हु इज द ओनली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द सूफियाना घराना टू अचीव इंटरनेशनल अक्लेम इन संतूर प्लेइंग।
1: डॉक्टर वर्षा जी ने गायन और तबले की शिक्षा मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
2: डॉक्टर वर्षा जी बिगेन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव्ड प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मास्टर पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉ. वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
2: Currently serving as a professor of music at the Government Girls PG College of Excellency Ujjain, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। When her fingers dance on the 100 strings of santur, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki

0: शुरुआत राग झिंझोटी से कर रही हैं। इसमें वे आलाप, जोड़ और झाला के पश्चात विलंबित गत जो त्रिताल में है, मध्य गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रेसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला she will present a vilambit gat in teen taal, a madhya gat in ek taal and a drut gat in teen taal. Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्युतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द सेंटर रिसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस आफ्टर द आलाप she will present a madhyagat in rupak taal and a drutgat in teen taal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was

0: presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजते हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं।

0: 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in the allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in the allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातःकाल 5:51 से पहली सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।